0: शुद्ध ज्ञान निरूपणाचे आपण 40 पर्यंत श्लोक आज घेत आहोत आणि त्यापुढचे पुढील भागात गुरुपौर्णिमेच्या दिवशी. तर न करिता वेदाभ्यास अथवा श्रवण सायास प्रेते विणु सौरस सद्गुरु कृपा. ग्रंथ मात्र मरहाष्ट त्याहून संस्कृत श्रेष्ठ या त्या संस्कृतामध्ये स्पष्ट थोर तो वेदांत त्या वेदांता परते काही सर्वथा श्रेष्ठ नाही जेथे वेद गर्भ सर्वही प्रगट झाला. असो ऐसा जो वेदांत त्या वेदांताचाही मथितार्थ अतिग्रह अतिगहन जो परमार्थ तो तू ऐका आता. अरे गहनाचेही गहन ते तू जाण सद्गुरु वचन सद्गुरु वचने समाधान नेमस्त आहे. सद्गुरु वचन तोचि वेदांत सद्गुरु वचने तोचि सिद्धांत सद्गुरु वचन तोचि धादांत सप्रचित आता. समर्थांनी यापूर्वीच्या समासामध्ये आपण ज्याला ज्ञान मानतो ते ज्ञान नव्हे आणि ज्ञानाविषयीची संकल्पना इथे या 6व्या समासात मांडलेली आहे.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज. सरकार संसद में नीट से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है. नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की. मुलाकात के बाद डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है.
2: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है. प्रधानमंत्री जी ने बहुत

0: स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों के लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
1: नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है। इनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हैं। इन नेताओं को लोक कल्याण मार्ग के पास प्रदर्शन स्थल से हिरासत में लिया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। स्कुब्जे में भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार फोरम में राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के बीच मौजूदा व्यापार वास्तविक क्षमता से बहुत कम है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो सकेगा। किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तर मैसेडोनिया की पहली यात्रा द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता दर्शाती है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर की दो दिन की फिलीपींस यात्रा आज से शुरू हो रही है। वे मनीला में आसियान रूपरेखा के अंतर्गत विदेश मंत्री स्तर की बैठकों में शामिल होंगे। इनमें आसियान भारत ईस्ट एशिया सम्मेलन और आसियान रीजनल फोरम की बैठकें शामिल हैं। विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका के विदेश मंत्रियों के साथ क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भी शामिल होंगे। उनके द्विपक्षीय बैठकें करने की भी उम्मीद है। भारत ने अफगानिस्तान के नूरिस्तान में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री भेजी है। खाद्य सामग्री और टेंट सहित अन्य राहत सामग्री अफगानिस्तान के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को भेजी गई है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत इस कठिन समय में अफगानिस्तान के संकटग्रस्त लोगों के साथ है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु का दौरा करेंगे। श्री राधाकृष्णन कोयम्बटूर में जीएनकेएनएम नर्सिंग कॉलेज के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति तिरुप्पुर में अविनाशी लिंगेश्वर शिव मंदिर भी जाएंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री श्री मोदी को विजयनगरम जिले के भोगपुरम में अलूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के लिए आमंत्रित करेंगे। इस हवाई अड्डे का उद्घाटन 1 अगस्त को प्रस्तावित है। श्री चंद्रबाबू नायडू केंद्रीय मंत्रियों अमित शाह, पीयूष गोयल, मनोहर लाल खट्टर और सीआर पाटिल के साथ राज्य से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये पुरस्कार साहसिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। नामांकन 20 अगस्त तक गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर कर सकते हैं। युवा कार्यक्रम विभाग ने माई भारत पोर्टल पर राष्ट्रीय ध्वज प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। ये प्रश्नोत्तरी 15 अगस्त तक खुली रहेगी। इस पहल का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास, विकास, महत्व और गरिमा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस प्रश्नोत्तरी में बहुविकल्पीय 20 प्रश्न हैं। 10 मिनट के अंदर इनके उत्तर देने होंगे। हॉकी इंडिया ने हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। विश्व कप 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स में आयोजित किया जाएगा। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। भारत का पहला मैच 15 अगस्त को वेल्स के साथ होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: नमस्कार, मी मृणाल कुलकर्णी आणि आपण ऐकत आहात इंद्रधनुष्याचे सात रंग FM रेनबो वाहिनी 107.1 MHz।
2: श्रीमन महागणाधिपतये नमः। चला मुलीच्या आई वडिलांनी कन्यादानासाठी खाली पाटावर बसा।
3: अगं शिल्पा, येईल का खाली बसता?
4: गुरुजी जरा स्टूल वर बसू का? माझे गुडघे भयंकर दुखतात, खाली बसूच शकत नाही।
3: बऱ्याच डॉक्टरांनी तर हिला ऑपरेशनचा सल्ला दिलाय।
2: अहो तुम्ही एक काम करा, सरळ पिंपरी चिंचवडच्या डॉक्टर परीक्षित फेगडेंकडे जा। तुम्हाला सांगतो, माझे गुडघे डॉक्टर परीक्षित फेगडेंनीच पूर्ण बरे केलेत। मी 5 वर्षे मांडी घालून पूजा सांगितली नव्हती, आता बघा मी पाटावर बसून पूजा सांगतोय। तुम्ही डॉक्टर परीक्षित फेगडेंचे उपचार घ्या। अहो तिथे गुडघ्याची झीज, मणक्यातील गॅप आणि जुनाट संधिवात यावर 100% खात्रीशीर आणि चांगले उपचार आहेत। डॉक्टर परीक्षित फेगडे यांचे उपचार, तेही विना ऑपरेशन।
3: हो गुरुजी, आता

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: रेनबो फंडेच्या उत्तरार्धात आपला सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत।
2: फेसबुक इन स्काय, व्हाट्सअप इन लाइफ, मन मोड काम, इथेनो आराम, सो स्टार्ट अप योर डे विथ रेनबो फंडे। रेनबो फंडे,
3: रेनबो फंडे, रेनबो फंडे,
2: म्यूजिकल साथ,

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: ठीक 8 वाजता आपण ऐकू शकता दिल्ली केंद्रावरून प्रसारित होणाऱ्या हिंदी बातम्या, 8:15 इंग्रजी बातम्या आणि त्यानंतर पुणे केंद्रावरून प्रसारित होणाऱ्या मराठी बातम्या ऐकू शकता 8:30।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में 2-2 फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य
3: घर। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में बड़े विस्तार का आह्वान किया। दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह। भारत आज चंडीगढ़ में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता करेगा। भारतीय नौसेना आज पनडुब्बी रोधी स्वदेशी युद्धपोत INS मालवण का कर्नाटक के कारवार में जलावतरण करेगी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने की योजना मंजूर की। भारत ने जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई। और चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज पीवी सिंधु का सामना उन्नति होटा से होगा। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। स्कोपिये में भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार फोरम में राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच इस दशक के अंत

0: द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो सकेगा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत का औषधि उद्योग नॉर्थ मैसेडोनिया में दवाओं और चिकित्सक उपकरणों के संयुक्त उत्पादन में निवेश कर सकता है। उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण, कोल्ड चेन, नवीकरणीय ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और स्टार्टअप क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने नॉर्थ मैसेडोनिया को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा रोधी अवसंरचना और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन जैसी पहल से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने अगले वर्ष भारत में आयोजित होने वाले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स में भाग लेने को भी आमंत्रित किया। नॉर्थ मैसेडोनिया से शुभश्री की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पूजा।
0: भारत की मेजबानी में ब्रिक्स देशों की स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आज चंडीगढ़ में शुरू हो रही है। 3 दिन की इस बैठक में मुख्य रूप से स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल स्वास्थ्य, महामारी से निपटने की तैयारी और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक सबकी पहुंच पर विचार विमर्श होगा।
2: यह बैठक स्वास्थ्य संबंधी प्रमुख वैश्विक प्राथमिकताओं पर सामूहिक कार्रवाई के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मंत्री स्तरीय बैठक में पारंपरिक और पूरक चिकित्सा, स्वस्थ जीवन शैली, मानसिक आरोग्य तथा सुदृढ़ स्वास्थ्य प्रणाली जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। आधिकारिक कार्यक्रम की शुरुआत आज वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक से होगी। इसके बाद कल केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय नौसेना आज कर्नाटक के कारवार में माहे श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस मालवण को बेड़े में शामिल करेगी। ये भारत के स्वदेशी युद्धपोत निर्माण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह मुख्य अतिथि होंगे।
3: कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में निर्मित आईएनएस मलवान आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत तैयार किया गया है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है। इसमें आरबीओ 6000 रॉकेट और डीआरडीओ द्वारा विकसित टॉर्पेडोज की शक्ति है। जर्मनी और भारत द्वारा तैयार किए गए सोनार का उपयोग भी किया गया है। माहे श्रेणी के इस युद्धपोत तटीय और उथले समुद्र क्षेत्र में प्रभावी परिचालन के लिए बनाया गया है। इससे नौसेना की समुद्री सुरक्षा और पनडुब्बी रोधी क्षमता और मजबूत होगी। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
5: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने का फैसला किया है। उच्च शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी को बढ़ाने और पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर को कम करने के लिए ये कदम उठाया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को लागू करने के लिए दिशा निर्देशों को मंजूरी दी गई।
2: योजना के तहत सरकार न केवल स्कूटर बल्कि उसका बीमा, पंजीकरण, हेलमेट, आवश्यक सहायक उपकरण और 4 लीटर पेट्रोल भी मुहैया कराएगी। दिव्यांग छात्राओं, शहीदों की बेटियों और गरीब परिवारों की बेटियों के लिए आय सीमा की शर्त में छूट भी दी जाएगी। राज्य सरकार का कहना है कि ये योजना उच्च शिक्षा में बेटियों की भागीदारी बढ़ाएगी और खासतौर पर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों की छात्राओं के लिए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों तक पहुँचना आसान बनाएगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी।

0: समाचार लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पारित कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सदन में विपक्ष के हंगामे और विरोध के बीच ये विधेयक पारित हुआ।
2: यूसीसी के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में एक से अधिक विवाह मान्य नहीं होगा, तलाक की प्रक्रिया कानूनी होगी और महिला पुरुष को समान उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। लिव इन रिलेशनशिप में एक महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा और विवाह का रजिस्ट्रेशन ग्रामीण स्तर तक जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे अलग रखा गया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष पर मर्यादा का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। श्री नवीन ने कहा कि सरकार सदन में नीट सहित सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है।
3: और मैं कहूंगा कांग्रेस और विपक्ष के साथियों से, हम संसद के पटल पर हर प्रकार के संवाद के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन आपकी जो मर्यादाएं तोड़ने की परंपरा बनती जा रही है, जो अराजकतावती सोच आपके अंदर विकसित हो रहा है, निश्चित रूप से इससे देश कहीं न कहीं दुखी है और देश अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है।
1: भारत ने विश्व व्यापार में अपनी बढ़ती भूमिका पर बल देते हुए जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित, पारदर्शी और भेदभाव रहित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने वैश्विक व्यापार प्रणाली में भारत की भूमिका तथा व्यापार संधि, उदार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और विकासशील देशों के बीच सहयोग से व्यापारिक संबंध मजबूत करने के प्रयासों पर बल दिया। वाणिज्य विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत समावेशी वैश्विक विकास में भरोसेमंद और विश्वसनीय साझेदार है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु का मुकाबला भारत की ही उन्नति हुड्डा से होगा। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन भी आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। पुरुष सिंगल्स के ही शुरुआती दौर में आज आयुष शेट्टी का सामना अलवी फरहान से होगा। पुरुष डबल्स में एमआर अर्जुन और हरिहरन अम्स करुणन, मिक्स्ड डबल्स में रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे तथा तनिषा क्रेस्टो और ध्रुव कपिला भी चुनौती पेश करेंगे। इसके अलावा हॉकी इंडिया ने हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा की है। विश्व कप 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स में आयोजित किया जाएगा। भारतीय टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार की जयंती पर उनका स्मरण किया है। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि समाज के प्रति उनकी सेवा और महाराष्ट्र के विकास में उनका योगदान सदैव याद रखा जाएगा। फ्रांस की संसद ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का ऐतिहासिक विधेयक पारित कर दिया है। संसद के दोनों सदनों में सांसदों ने इस विधेयक के समर्थन में वोट दिया। इसके तहत स्कूल में विद्यार्थियों के मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इस फैसले से फ्रांस सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बन जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगस्त 2028 से जेनेरिक दवाओं के आयात पर भारी शुल्क लगाने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य अमेरिका में इन दवाओं का उत्पादन बढ़ाना है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि 1 अगस्त से अमेरिका में आयात होने वाली सभी जेनेरिक दवाओं पर 2 साल तक कोई शुल्क नहीं लगेगा। मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अगले 2-3 दिनों के दौरान पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश और पंजाब में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नास।
5: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर नीट पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष के धरने, छात्रों के विरोध प्रदर्शन और पेपर लीक पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान संबंधी समाचार सबसे ऊपर छाए हुए हैं। नवभारत टाइम्स का शीर्ष समाचार है, जंतर मंतर पर लौटी भीड़, पीएम के घर के बाहर से विपक्ष के नेता हटाए। पत्र ने प्रधानमंत्री मोदी के कथन को भी सुर्खियों में जगह दी है, पेपर लीक के दोषियों को नहीं बख्शा। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रधानमंत्री मोदी ने नीट पेपर लीक को बताया घोर पाप। राजस्थान पत्रिका, लोकसत्य, दैनिक ट्रिब्यून और अमर उजाला ने धरना दे रहे विपक्षी नेताओं की तस्वीरें भी प्रमुखता से छापी हैं। जनसत्ता और दैनिक भास्कर ने सिक्किम में एक निर्माणाधीन सुरंग ढहने से हुई मजदूरों की मौत के समाचार को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। पत्रों ने केंद्र और राज्य सरकार की ओर से मजदूरों के आश्रितों को अनुग्रह राशि की घोषणा का उल्लेख करते हुए सुरंग के प्रवेश द्वार और राहत अभियान का चित्र प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने पॉजिटिव न्यूज स्तंभ के अंतर्गत राजस्थान के आंधी गांव का उल्लेख किया है, जिसे बायोटेक वैज्ञानिक डॉक्टर सुदीप्ति अरोड़ा ने 100% कचरा रहित और आत्मनिर्भर बना दिया है। पंजाब केसरी ने कमर्शियल जहाज पर हुए रूसी हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत के बाद रूसी राजनयिक को तलब किए जाने का समाचार सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने इसी खबर पर आधारित संपादकीय को शीर्षक दिया है, सुरक्षा की फिक्र। पत्र का कहना है कि भारत से हर साल बड़ी संख्या में लोग रोजगार के लिए विदेश जाते हैं और वहां से विदेशी मुद्रा यहां भेजते हैं, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूती मिलती है। मगर सवाल ये है कि विदेश में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है।
1: और लीजिए अंत में सुनिए मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में बड़े विस्तार का आह्वान किया। दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह। भारत आज चंडीगढ़ में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता करेगा। भारतीय नौसेना आज पनडुब्बी रोधी स्वदेशी युद्धपोत INS मालवण का कर्नाटक के कारवर में जलावतरण करेगी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने की योजना मंजूर की। भारत ने जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई। और चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज पीवी सिंधु का मुकाबला होगा उन्नति हुड्डा से। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. President Draupadi Murmu calls for significant expansion of economic engagement between India and North Macedonia, urges businesses from both countries to move beyond trade and build long-term partnerships. India to host 3-day meeting of BRICS health ministers in Chandigarh beginning today. Indian Navy to commission indigenous anti-submarine warfare shallow water craft INS Malvan at Karwar in Karnataka today. Uttar Pradesh Cabinet approves scheme to provide free scooty to meritorious female students of the state. India reaffirms its commitment to rule-based multilateral trading system at WTO Trade Policy Review in Geneva, and PV Sindhu to take on compatriot Unnati Huda in China Open Badminton Tournament today. And now the news in detail. President Draupadi Murmu has called for expanding India-North Macedonia economic ties, urging businesses from both countries to move beyond trade and forge long-term partnerships based on investment, technology and innovation. Addressing the India-North Macedonia Business Forum in Skopje, President Murmu said her visit, the first ever by an Indian president to North Macedonia, reflects India's strong commitment to strengthening relations. President Murmu also invited North Macedonia to collaborate with India on digital public infrastructure, highlighting the success of India's UPI platform in promoting financial inclusion.
6: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने आईटी, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
0: Our correspondent covering the president's visit to North Macedonia has filed this report.
7: President Murmu said India's pharmaceutical industry is well placed to invest in North Macedonia through joint manufacturing of medicines and medical devices for the wider Balkan and European markets. She also encouraged partnerships in food processing, cold

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय ठीक 8:42 हुए हैं और मैं हूं RJ किरण वाला। समय आपके साथ सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब और तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गाने के साथ।

0: को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
1: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध शर्तें लागू
1: इंडस्ट्री ट्रेडिंग सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ।

इस समय ठीक 8:55 हुए हैं और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज पर। एक ऐसी जादू भरी आवाज जिसने हर दिल को छुआ, उनके गाने आज भी सदाबहार है। हिंदी सिनेमा को मुकेश जी ने अपने अद्भुत आवाज में बहुत सारे बेहतरीन गाने दिए हैं। आज मुकेश जैसा गायक कलाकार कोई भी नहीं है। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके गाए गीत लोग आज भी गुनगुनाते हैं। यह तो मुकेश ने अपने ज़माने के सभी लीड एक्टर्स के लिए गाने गाए, लेकिन सबसे ज़्यादा उन्होंने शोमैन राज कपूर साहब के लिए गाए हैं। वो राज कपूर के आवाज़ थे। आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर हम उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं।

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित, बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

जी हाँ, इस समय ठीक 9:08 हुए हैं और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूँ आरजे किरण माला, इस समय आपके साथ अपने सुनहरे किरणों के साथ आई हूँ मैं लेकर एक से बढ़कर एक बेहतरीन गाने। तो दोस्तों, हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं मुंबई की लोकल ट्रेन का सफ़र पीक आवर्स में यानी सुबह और शाम में किसी साहसिक अनुभव से कम नहीं है। इस यात्रा में भारी भीड़, भाग दौड़ और लोगों की जिंदा दिली का अनूठा मिश्रण देखने को मिलता है और लोकल ट्रेन के यात्री शहर के कभी न रुकने वाले जज्बे को भी दर्शाते हैं। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कैसी है लोकल ट्रेन के यात्रियों की जिंदगी।

0: जी हाँ, समय ठीक 9:14 हुए हैं और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल FM रेनबो 107.1 MHz पर।
1: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
2: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
1: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

इस समय ठीक 9:23 हुए हैं और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। बचपन से ही मैंने ये चार पंक्तियां सुनी हैं, ए दिल है मुश्किल जीना यहाँ, ये है बॉम्बे मेरी जान। मुंबईकर होने के नाते मैंने पिछले कई सालों में इस शहर से बहुत कुछ सीखा है। हर दिन एक ही जैसा लगता है क्योंकि हमारी सुबह लोकल ट्रेन से शुरू होती है और शाम लोकल ट्रेन से ही खत्म होती है, लेकिन इस दिनचर्या ने हमें कुछ ऐसी बातें सिखाई हैं जो मुंबई में कहीं और नहीं सिखाई जाती। मुंबई लोकल के हर डिब्बे में कुछ कहानी

9:28 हुए हैं और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और हम आपके लिए प्ले कर रहे हैं एक से बढ़कर एक बेहतरीन गाने, वो भी मुकेश जी की आवाज़ में। और आपको गाने कैसे लग रहे हैं आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए बता सकते हैं। वैसे बहुत सारे श्रोता हैं जो इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं व्हाट्सएप के ज़रिए।

0: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

9:36 हुए हैं और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। रोजाना एक ही ट्रेन और एक ही डिब्बे में सफर करने वाले लोग अक्सर अपना ग्रुप बना लेते हैं। वे एक दूसरे का सुख दुख साझा करते हैं, ट्रेन में ही बर्थडे मनाते हैं और कभी कभी तो लोग ट्रेन के सफर में ही ब्रेकफास्ट, लंच या छोटी सी पार्टी भी कर लेते हैं। महिलाओं के डिब्बे का माहौल तो वाह और भी अनोखा होता है। एक दूसरे के ड्रेस पर खास चर्चा, कहाँ से खरीदी, कहाँ से लिया, कितना डिस्काउंट मिला या नहीं, कितने में खरीदी और कहाँ कहाँ पर कपड़ों की सेल लगी हुई है, शूज़ की सेल लगी हुई है, इस तरह से कई सारी बातें होती है और लगता है कि मुंबई की पूरी मार्केट का पिटारा खुल जाता है।

0: इस समय ठीक 9:41 हुए हैं और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज पर। तो अभी कुछ देर पहले हमने कहा कि रोजाना एक ही ट्रेन में और एक ही डिब्बे में सफर करने वाले लोग अक्सर अपना ग्रुप बना लेते हैं। जी हाँ, मुंबई लोकल ट्रेन में महिलाओं द्वारा सफर के दौरान सब्जी काटना एक आम और लोकप्रिय नजारा होता है। इसे मुंबई की महिलाओं के बेहतरीन टाइम मैनेजमेंट का प्रतीक माना जाता है। काम और घर के बीच संतुलन बनाने वाली कामकाजी महिलाएं अक्सर ट्रेन में यात्रा करते समय मटर छीलना, साग सब्जी साफ करना या सब्जियां काटने जैसे घरेलू काम निपटा लेती हैं। लेडीज कंपार्टमेंट में अक्सर महिलाएं एक दूसरे की मदद करती हैं या आपस में गपशप करते हुए ये काम पूरा करती हैं। तो हम आपको एक ऐसा गाना सुनाएंगे, बहुत ही पुराना गाना है, बहुत ही अच्छा है, मुकेश जी की आवाज़ में है और थोड़ा अलग तरीके का गाना है, तो मुझे लगता है आप सभी को पसंद आएगा। और अगर आपको पसंद आया तो झट से व्हाट्सएप के जरिए हमें बस एक इमोजी भेज दीजिए कि आपको पसंद आया है।
1: ना तो आज बरसात का मौसम, ना कहीं छाई बदरिया, फिर भी मोरे जिया रम चमके, अरे थम थम कोई बिझुरिया।
2: बाह बाह बाह, तुहार जवाब नाही,

0: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना।
1: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू।
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध। शर्तें लागू।
1: इंडस्ट्री ट्रेडिंग सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना। कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक। एनरिचिंग लाइफ।

0: की कमर है, सिर की नजर है, पतली कमर है, सिर की नजर है।
1: इस समय ठीक 9:50 होने वाले हैं और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अभी थोड़ी देर पहले हमने दो गाने आपको बैक टू बैक सुनाए और शायद मुझे आशा है कि आप सभी को बहुत पसंद आए होंगे, क्योंकि बहुत ही कम प्ले होते हैं ऐसे गाने और फास्ट बीट के गाने होते हैं जो उस समय भी इस तरह के गाने हुआ करते थे। तो दोस्तों, मुंबई की लोकल ट्रेन सिर्फ सफ़र का साधन नहीं है बल्कि ये इस शहर की लाइफलाइन है। वैसे देखा जाए तो सबसे सस्ता पब्लिक ट्रांसपोर्ट शायद मुंबई में ही है, इसमें भी मुंबई लोकल तो सबसे सस्ती है, इसलिए सैर सपाटे के लिए आने वाले लोगों की पहली पसंद मुंबई लोकल होती है। टूरिस्ट के लिए लोकल ट्रेन से मुंबई में घूमने के लिए सस्ता टूरिस्ट टिकट भी मौजूद है। अपनी मुंबई लोकल हमेशा से मुंबई की शान रही है। कभी कभी कुछ ऐसे हादसे या क्राइम हो जाते हैं जिनकी वजह से सभी को तकलीफ होती है, तो ट्रेन में यात्रा करते समय डिसिप्लिन रखें, खुद पर संयम रखें।

जी हाँ, समय ठीक 9:56 हुए हैं और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूँ आरजे किरण माला, इस समय आपके साथ हमारा साथ बना रहेगा ठीक 11 बजे तक। तो हमारे साथ बहुत सारे श्रोता हैं जो बहुत अच्छा अच्छा मैसेजेस दे रहे हैं, कह रहे हैं कि बहुत ही प्यारे प्यारे गीत आपने सुनाए और वो भी एक से बढ़कर एक। थैंक यू आप सभी श्रोताओं को, जैसे कि राकेश माथुर जी पुणे से हमें सुन रहे हैं, और एक श्रोता है जिन्होंने कहा कि आज मॉर्निंग में आपने हमारा दिन बना दिया, एक से बढ़कर एक गाने आपने हमें सुनाए। लिखते हैं मनीष कांदीवली से, जी हाँ थैंक यू जी। और साथ ही प्रमोद चिंचोलकर जी भी हमें सुन रहे हैं बाबा दादर से, और कल्पना राजू उल्लासनगर से वो हमें सुन रही हैं और कह रही हैं कि बहुत अच्छे गाने आपने प्ले किए। थैंक यू कल्पना राजू जी। और साथ ही संयोगिता चौहान इंदौर से अभी अभी जुड़ गई हैं, पंकज मोहोड़ मंगेश जी भी हमें सुन रहे हैं, और साथ ही महेश भाटकर सेंटा क्रूज से, और प्रदीप अनंत कृष्णन जी भी हैं, रजनीकांत पाटिल गणेश पाटिल वाडवान से, और साथ ही विजेंद्र घटोल फिरोज सिंगनपुरिया जी, दीपा पालकर जी, हितेंद्र दास जी भी हमें सुन रहे हैं आसाम से। तो अब से कुछ ही पलों में यानी ठीक 10 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, और उसके बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्ते भारत। तो इसी तरह से हमें सुनते रहिए और बने रहिए एफएम रेनबो के साथ। और भी हमारे श्रोता हैं जैसे कि अजय साखरे जी भी हमें सुन रहे हैं और कह रहे हैं कि सभी लोग लिखते हैं कि आप हमारा नाम ज़रूर लीजिए एयर पर। जी हाँ, मेरी कोशिश बनी रहेगी कि मैं सभी का नाम लूँ, अगर किसी का छूट जाए तो प्लीज़ आप एक इमोजी भेज दीजिए कि मेरा नाम आपने नहीं लिया है। जी हाँ, मंजूषा जी भी हमें सुन रही है मुलुंड से, वो लिख रही हैं कि बहुत बढ़िया है प्रोग्राम। जी हाँ थैंक यू, और बस इंतज़ार करिए कार्यक्रम नमस्ते भारत का। और मैं देख लेती हूँ और भी कोई अच्छे मैसेजेस आए हैं तो मैं जल्दी से पढ़ लेती हूँ और आपको बता देती हूँ। वैसे तो मैसेजेस बहुत बड़े बड़े लिखते हैं तो मैं नाम ही बता देती हूँ आप सभी को कि कौन कौन इस समय है हमें सुन रहे हैं और लिख रहे हैं कि हमारा सारे गाने जो भी आपने प्ले किए सारे गाने हमारे फेवरेट हैं। और साथ ही जी हाँ, अंजू जी भी हैं जो रिटायर्ड डॉक्टर हैं, वो बहुत ही प्यार से हमें सुनती हैं और सारे गाने लिखती भी हैं, और साथ ही

राय भी हमें भेजी है, थैंक यू जी, और प्रणव शिंदे जी भी थैंक यू। तो बने रहिए हमारे साथ, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: वाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल। एफएम रेनबो का प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी सुन सकते हैं। प्रस्तुत है हिंदी में समाचार। नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने कल रात रिहा कर दिया। इनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हैं। इन नेताओं को लोक कल्याण मार्ग के पास प्रदर्शन स्थल से हिरासत में लिया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के लोक कल्याण मार्ग पर किए गए प्रदर्शन की आलोचना की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल उत्तरी मैसेडोनिया की संसद को संबोधित किया। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तरी मैसेडोनिया की पहली ऐतिहासिक राजकीय यात्रा है। राष्ट्रपति ने 1 अरब 40 करोड़ भारतीयों को शुभकामनाएं दी और उत्तरी मैसेडोनिया को एक स्थिर, बहुध्रुवीय और समृद्ध वैश्विक भविष्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भागीदार बताया। मौसम विभाग ने मुंबई में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही मुंबई के अलावा ठाणे और रायगढ़ में भी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार इन इलाकों में कल सुबह तक तेज बारिश हो सकती है, जिसे देखते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगस्त 2028 से जेनेरिक दवाओं के आयात पर भारी शुल्क लगाने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य अमेरिका में इन दवाओं के उत्पादन बढ़ाना है। अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार।

नमस्कार, इस समय ठीक 10:02 हुए हैं और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और इस समय मैं हूं आरजे किरण माला, आपके साथ हमारा साथ बना रहेगा ठीक 11 बजे तक। तो ये समय होता है कार्यक्रम नमस्ते भारत का। आज हमारा विषय है जीते हैं शान से। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गाने के साथ।

इस समय ठीक 10:06 हो रहे हैं और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल FM रेनबो। कभी कभी ऐसे हो जाता है, आप कुछ और सोचते हो और कुछ और मुंह से निकल जाता है। इसी तरह अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि छः बजकर नहीं बाबा, 10:00। तो दोस्तों, अगर करियर की बात करें तो आज महिलाएं आसमान छू रही हैं, यानी हर फील्ड में महिलाएं अच्छे करियर बना रही हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब लड़कियों को ठीक से पढ़ाया भी नहीं जाता था। आज एक ऐसी ही लड़की की जिंदगी के बारे में हम बात करेंगे। वो पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन उन्हें मेडिकल कॉलेज में एडमिशन देने से ही मना कर दिया गया। तो सुनते रहिए FM रेनबो

0: पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।
1: पवन करे शोर।
0: हाँ,

0: कॉस्मोस डिजिटल बैंकिंग सेवा, आसान और सुरक्षित।
1: इंटरनेट बैंकिंग,
0: मोबाइल बैंकिंग,
1: व्हाट्सएप बैंकिंग,
0: ईकेवाईसी,
1: एनईएफटी, आरटीजीएस,
0: आईएमपीएस,
1: कॉस्मोस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड,
0: यूपीआई जैसे कई सारे डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मोस बैंक में जरूर होना चाहिए।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

0: से मना कर दिया गया। वजह सिर्फ इतनी थी कि ये पढ़ाई लड़कियों के लिए नहीं है, मजबूरन उन्हें इतिहास में एडमिशन लेकर आगे पढ़ना पड़ा। आप समझ सकते हैं कि वो कैसा समय था देश के लड़कियों के लिए। व्हाट्सएप के जरिए अगर आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, बहुत ही कम शब्दों में लिखे।
1: मैंने

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय ठीक 10:35 हुए हैं और कार्यक्रम आप सुन रहे हैं नमस्ते भारत। 2 अगस्त 1988 का दिन था। त्रावणकोर में क्रिश्चियन फैमिली में एक लड़की ने जन्म लिया, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा और आपसे कहा कि व्हाट्सएप के जरिए आप हमें बता सकते हैं आपके बारे में, मतलब आपके मन में कोई बात है जो कि मैरी पूनन ने विज्ञान में एडमिशन नहीं ले पाई तो आगे चलकर इतिहास में एडमिशन ले लिया, इस पर आप कुछ हमें कह सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है, तो व्हाट्सएप के ज़रिए आप हमें बता सकते हैं। तो दोस्तों, मैरी पूनन जैसे होनहार लड़की को विज्ञान के फील्ड में एडमिशन नहीं मिला, उन्हें इतिहास में बीए करना पड़ा, लेकिन कहते हैं ना, जहां चाह वहां रहा। मैरी पूनन ने अपने सपनों को टूटने नहीं दिया, उन्होंने लंदन जाकर मेडिकल की पढ़ाई की और 1915 में मेडिकल की डिग्री हासिल करके वो एक डॉक्टर यानी महिलाओं की डॉक्टर बन गई। इसके बाद वो भारत वापस आ गई। 1916 में उन्होंने त्रावणकोर के महिला और बाल अस्पताल की जिम्मेदारी संभाली।

0: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज पर, और हमने जैसे कि आपसे बात की कि नमस्ते भारत में जीते हैं शान से, हम सभी कभी ना कभी किसी न किसी अस्पताल में जरूर गए हैं। अगर हॉस्पिटल में लाइट ना हो तो कितनी तकलीफ हो सकती है, ये बात आज हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं और समझ सकते हैं। लेकिन 1916 में डॉक्टर मैरी पूनन ने लालटेन की रोशनी में सैकड़ों ऑपरेशन किए। ये वो समय था जब अस्पताल में ना तो बिजली होती थी और ना ही ज़रूरी मेडिकल उपकरण हुआ करते थे। बाद में वो त्रावणकोर की पहली महिला सर्जन बनी। डॉक्टर मैरी पूनन ने साबित करके दिखाया कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जीते हैं शान से मैं आज सिर्फ इतना ही, तो सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना।

जी हाँ, समय ठीक 10:51 हुए हैं, यानी समय हमें बता रहा है कि किरणमाला आपका जाने का समय नज़दीक आ रहा है, यानी स्टूडियो से जाने का समय। तो ऐसे ही मेरा मन किया कि क्यों ना मैं जल्दी से सभी के नाम एक बार फिर से पढ़ लूँ। वैसे तो मैंने नाम बता ही दिए थे कि बहुत सारे श्रोता है जो हमें इस समय सुन रहे हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी है। यहाँ पर राकेश माथुर जी लिखते हैं कि आज आपने मेरे सारे पसंदीदा गाने लगाए और आज मेरी लॉटरी लग गई, क्योंकि बहुत ही कम ऐसे गाने प्ले होते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही स्नेहा वर्ली से लिखती हैं कि बहुत ही खूबसूरत गाने आपने प्ले किए, थैंक यू जी। और भी बहुत सारे श्रोता हैं, जैसे कि एक और हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छी बातें लिखी हैं, उनका नाम नहीं आया है लेकिन लिखा बहुत अच्छा है। और साथ ही प्राजक्ता जी भी हमारा प्रोग्राम सुन रही है, उन्हें भी मुकेश जी के सारे गाने अच्छे लगे। और डोंबिवली से सुजाता लिखती हैं कि आज सारे गाने इतने अच्छे लगे कि मन एकदम मंत्रमुग्ध हो गया। धन्यवाद जी सुजाता। और भी है हमारे श्रोता जो कि उनका पूरा परिवार हमें सुन रहा है, बहुत सारे नाम है, पांडर करवड़ा से सुन रहे हैं। और है जय जसपुर उत्तराखंड खंड से, इनका पूरा परिवार हमें सुन रहा है, मोहम्मद रिहान, समरीन, परवीन, माहिरा, नूर, नाजमा बेगम, सिद्दीकी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, यानी इनका पूरा परिवार हमें सुन रहा है। आदर्श कनौजी जो कि हमें सुन रहे हैं दादर से, जैसे कि हमने कहा कि मंगेश जी भी हमें सुन रहे हैं। और हैं जी हाँ, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की ओर। साथ ही दीपा पालकर जी ने भी लिखा है कि गानों की लिस्ट बहुत अच्छी थी, तो सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना। बहुत ही अच्छा है ये गाना, आपको शायद नहीं बिल्कुल अच्छा लगेगा ये गाना।

नमस्कार और अब वक्त हो चला है आज के हिंदी समाचार का। भारतीय नौसेना ने आज कर्नाटक के कारवार में माहे श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS मालवण को बेड़े में शामिल किया। ये भारत के स्वदेशी युद्धपोत निर्माण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की जयंती पर उनका स्मरण किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि समाज के प्रति उनकी सेवा और महाराष्ट्र के विकास में उनका योगदान सदैव याद रखा जाएगा। अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने कहा है कि उसने हॉर्मुज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों के लिए खतरा पैदा करने की ईरान की क्षमता को और कम करने के लिए लगातार 11वीं रात हवाई हमले किए। कमांड ने मिलिट्री ऑपरेशन सेंटर, समुद्री क्षमताओं, एयरक्राफ्ट हैंगर, ड्रोन स्टोरेज फैसिलिटी और मिलिट्री लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में PV सिंधु का मुकाबला भारत की ही उन्नति हुड्डा से होगा। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन भी आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। पुरुष सिंगल्स के ही शुरुआती दौर में आज आयुष शेट्टी का सामना अलवी फरहान से होगा।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: इसी म्यूजिकली योर्स पर आ गया हूं मैं आप लोगों के बीच, आपका हमराज आरजे अभिनव। जी हां, 107.1 मेगाहर्ट्ज़ एफएम रेनबो पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई के केंद्र का एफएम रेनबो चैनल और एफएम रेनबो का प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 104.4 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी सुन सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है शो में जिसका नाम है ब्रेक फ्री। यहाँ पर ब्रेक फ्री म्यूजिक सुनने को मिलता है, लेकिन साथ साथ कुछ और बातें जानने को भी मिलती हैं। और आज भी एक और स्पेशल दिन है, आज है दोस्तों अरमान मलिक का बर्थडे यानी कि जन्मदिन। आज का ब्रेक फ्री थोड़ा खास है क्योंकि आज हम बात करेंगे उस आवाज़ की जिसने अपनी मासूमियत, अपनी मिठास और अपनी रोमांटिक आवाज़ से लाखों दिलों में अपनी खास जगह बनाई है। जी हाँ, आज का ब्रेक फ्री है अरमान मलिक के नाम, और शुरुआत करता हूँ इस गाने से।

नमो मैं आप लोगों के साथ आपका हमराज आरजे अभिनव। 22 जुलाई 1995 को मुंबई में जन्मे अरमान मलिक आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। एक ऐसे गायक जिन्होंने बचपन से ही संगीत की दुनिया में कदम रखा और फिर हिंदी सिनेमा से लेकर अंतर्राष्ट्रीय संगीत तक अपनी अलग पहचान बनाई। तो आइए आज के इस खास मौके पर सुनते हैं अरमान मलिक की आवाज़ में कुछ ऐसे गीत जो शायद आपकी भी किसी खूबसूरत याद से जुड़े हुए हों।

बनाऊ आप लोगों के साथ में ब्रेक फ्री में, आपका हमराज आरजे अभिनव। कुछ आवाजें सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचती हैं, सीधे दिल तक पहुंचती हैं। हरमान मलिक की आवाज भी कुछ ऐसी ही है। रोमांस हो, प्यार हो, जुदाई हो या फिर किसी अपने को याद करने का एहसास, उनकी आवाज हर भावना को बेहद खूबसूरती से छूती है। जैसे कि था अभी जय हो जो एकदम अलग था, तुम्हें अपना बनाने का, ये जो गाना भी आपने रिसेंटली सुना जो रोमांटिक था, इससे पहले देताली और घर नहीं जाना, तो यानी कि सैड भी, रोमांटिक भी और नॉर्मल भी और ड्रामेटिक भी। लेकिन हरमान की कहानी सिर्फ एक सफल गायक की कहानी नहीं है, उनकी आवाज़ हर भावना को बेहद खूबसूरती से छूती है। उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट यानी बतौर बाल गायक अपनी संगीत यात्रा शुरू की और 2007 में फिल्म तारे ज़मीं पर के गीत बम बम बोले से अपनी पहचान बनाई। इसके बाद उन्होंने लगातार अपनी आवाज़ और संगीत से एक लंबा सफर तय किया और अब सुनते हैं उनका एक और बेहद खूबसूरत सा गीत। आऊँगा आप लोगों के पास छोटे से प्यारे से नन्हे से इस ब्रेक के बाद।

आप सुन रहे हैं ब्रेक फ्री और आज का पूरा एक घंटा है अरमान मलिक के नाम। हमें शो डेडिकेट करते हैं अरमान मलिक को और साथ में आप सभी लोगों को। दोस्तों, अरमान मलिक को सिर्फ एक रोमांटिक सिंगर के तौर पर देखना शायद उनके संगीत सफर को छोटा करके देखना होगा। उन्होंने हिंदी के अलावा और भी बहुत सारी भाषाओं में गाने गाए हैं और अंग्रेजी संगीत की दुनिया में भी अपनी पहचान बनाई है। उनकी जर्नी ये बताती है कि कलाकार के लिए सीमाएं सिर्फ वहीं तक होती हैं जहां तक वो खुद को सीमित रखता है। तो चलिए अब एक और ऐसा गीत जिसको सुनते ही शायद आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाए, ऐसा लेकर आता हूं। जब तक

तो जाने के बाद वैसे मैंने की भी नहीं और आपको भी नहीं करनी है, तब तक बना हुआ हूँ आप लोगों के साथ, मैं ब्रेक फ्री में आपका हमराज आरजे अभिनव। बात कर रहे थे हम अरमान मलिक की, और आपको भी उनका अगर कोई गाना पसंद है तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर शेयर करिए। कभी कभी कोई गाना हमारी कहानी नहीं होता है, लेकिन फिर भी लगता है कि जैसे ये गाना सिर्फ हमारे लिए लिखा गया है। अरमान मलिक के कई गीतों के साथ यही रिश्ता है, उनकी आवाज़ में खास तरह

सादगी है, और शायद यही वजह है कि उनका संगीत युवाओं से लेकर हर उम्र के लिसनर्स तक आसानी से पहुंचता है। और कभी कभी उनकी आवाज़ ऐसी भी लग सकती है कि आतिफ असलम जैसा एक खुश्की या खरस सी आ रही है आवाज़ में, तो कई बार लोग तुलना करते हैं, लेकिन दोनों के गाने का ढंग थोड़ा अलग अलग है। अब पेश करता हूँ एक और गाना।

0: डिजिटल बैंकिंग सेवा, आसान और सुरक्षित।
1: इंटरनेट बैंकिंग,
0: मोबाइल बैंकिंग,
1: व्हाट्सएप बैंकिंग,
0: ईकेवाईसी,
1: एनईएफटी, आरटीजीएस,
0: आईएमपीएस,
1: कॉस्मोस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड,
0: यूपीआई जैसे कई सारी डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मोस बैंक में जरूर होना चाहिए।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

पृथ्वी में बना हुआ हूं मैं आप लोगों के साथ, आपका हमराज आरजे अभिनव, एक खास तरह की सादगी की आवाज के साथ अरमान मलिक के बर्थडे का ये शो हम लोग उनके साथ लेकर चल रहे हैं। आज उनके जन्मदिन पर एफएम रेनबो की मुंबई की तरफ से उन्हें ढेर सारी शुभकामना देता हूं। अरमान, आपकी आवाज यूं ही लोगों की जिंदगी में प्यार, उम्मीद और खूबसूरत एहसास भरती रहे। दोस्तों, एक कलाकार का सफर सिर्फ उसकी उपलब्धियों से यानी कि अचीवमेंट से नहीं बनता है, बल्कि उन तमाम कोशिशों से बनता है जो पर्दे के पीछे होती हैं। अरमान मलिक ने छोटी उम्र से ही संगीत सीखा, प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और धीरे धीरे अपनी पहचान बनाई। आज वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ फ्रीलांस यानी कि स्वतंत्र और अंतर्राष्ट्रीय संगीत में भी सक्रिय हैं। तो आज के इस खास दिन पर क्यों ना एक बार फिर से लौटे उन गीतों की तरफ जिन्होंने अरमान को करोड़ों लिसनर्स के दिलों के करीब पहुंचाया।

बनाऊ आप लोगों के साथ आपका हमराज आरजे अपना ब्रेक फ्री म्यूजिक चल रहा है और चल रही है गीतों की बात, संगीत की बात, गानों की बात अरमान मलिक के बर्थडे पर। और वक्त है उस आवाज को सुनने का जो कहती है कुछ बातें कहना जरूरी नहीं होती, कभी कभी एक ही गीत ही सब कुछ कह देता है। आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो मुंबई 107.1 और ब्रेक फ्री में आज हम मना रहे हैं अरमान मलिक का जन्मदिन। तो अगर आपके पास पास कोई भी ऐसा इंसान है जिससे आप कुछ कहना चाहते हैं तो शायद आज का गीत आपके दिल की बात उस तक पहुंचा देगा।

दोस्तों आप इस जन्मदिन विशेष को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं एक और खूबसूरत नगमा, लेकिन उससे पहले आपसे एक सवाल। अरमान मलिक का कौन सा गीत आपके दिल के ज्यादा करीब है? क्या ऐसा कोई गाना जो आपको किसी खास इंसान की याद दिलाता है, या फिर कोई ऐसा गीत जिसे आप अकेले सुनना पसंद करते हैं? और हमें अपने मैसेज जरूर भेजिए, क्योंकि एफएम रेनबो मुंबई पर आपकी पसंद और आपकी कहानी भी हमारे लिए उतनी ही खास है। और अब सुनिए ये गीत। हालांकि चाहे बोल दो ना जरा हो, मैं हूँ हीरो तेरा, जाने क्यों और जाने नहीं देंगे, तो जो उनकी आवाज़ ने अलग अलग इमोशंस को अपनी खास मिठास दी है।

0: चकरक चीचाचो चकलोरम गंडो वंडो लकरकटम अक्को टक्को इडिगिडिगिडिगो इडिपाय विडिपाय चिकिचकचो गिलिगिलिमल सुलुसुलुमल मकनक हुकुबुकुरे टुकुबुकुरे चकलक बिक्को चिक्को सिलिसिलिसिलिगो बगरदुम चकरदुम चिकिचकचो
1: Shh.

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और एफडी के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

आप लोगों के साथ मैं आपका हमराज आरजे अपना 107.1 मेगाहर्ट्ज एफएम रेनबो पर। और अब जारी है क्या वही ब्रेक फ्री म्यूजिक। बात कर रहे थे हम लोग अरमान मलिक की और उनके गानों की, और आज है ये बर्थडे स्पेशल। बर्थडे स्पेशल पर और भी बात कर रहे हैं हम लोग। जैसे कि मैंने पूछा था क्या कोई ऐसा गाना है जो आपको किसी खास इंसान की याद दिलाता है, और अब सुनिए। देखते ही देखते ब्रेक फ्री का ये खास घंटा भी अपनी मंजिल तक पहुंच गया है, लेकिन गाने ज़रूर लेकर आऊँगा आपके पास। आज हमने बात की है, सुना है और महसूस किया उस आवाज़ को जिसने प्यार को अपनी आवाज़ दी और यादों को अपना संगीत दिया और करोड़ों लिसनर्स के दिल में अपनी जगह बनाई। अरमान मलिक, वेरी हैप्पी बर्थडे। आपकी आवाज़ यूँ ही हमारी रेडियो, हमारी प्ले लिस्ट और हमारी यादों का हिस्सा बनी रहे। मैं हूँ आरजे अभिनव और आप सुन रहे थे ब्रेक फ्री, और सिर्फ एफएम रेनबो मुंबई 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ब्रेक लेना ज़रूरी है, लेकिन अच्छे म्यूजिक से कभी ब्रेक मत लीजिए। अगला शो भी है और तब तक के लिए और गाने सुनिए। मैं रहूंगा आप लोगों के साथ म्यूजिक कैफे में भी, और उसके बाद हेट एंड ऑर्ड सुनते रहिए एफएम रेनबो मुंबई 107.1 मेगाहर्ट्ज़।

वक्त हो चला है आपके हिंदी समाचार का। नीट पेपर लीक मामले समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष से सदन चलाने में सहयोग करने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा, जिसके चलते लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार और सांसद सुप्रिया सुले ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस

मुलाकात के दौरान विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। पिछले कुछ दिनों में मराठवाड़ा के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के बावजूद इस इलाके में अभी भी बारिश की कमी बनी हुई है। बारिश से खरीफ की फसलों को राहत मिली और मिट्टी में नमी भी बढ़ी है, लेकिन बुआई को बढ़ावा देने के लिए अभी भी बड़े पैमाने पर बारिश की ज़रूरत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगस्त 2028 से जेनरिक दवाओं के आयात पर भारी शुल्क लगाने की घोषणा की है। उसका उद्देश्य अमेरिका में इन दवाओं का उत्पादन बढ़ाना है। सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि 1 अगस्त से अमेरिका में आयात होने वाली सभी जेनरिक दवाओं पर 2 साल तक कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसके बाद शुल्क पहले वर्ष के लिए 100% और अगले वर्ष के लिए 200% तक बढ़ाया जाएगा।

0: रानी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स
1: म्यूजिकली योर्स पर बना हुआ हूं मैं आप लोगों के साथ। और अब वक्त हो चला है आज के दूसरे शो का, यानी कि जो आपके साथ लाइव बना हुआ है वो है शो म्यूजिक कैफे। कॉफी और कैफे चुनते हुए और पीते हुए और गानों को सुनते हुए यहाँ पर बने रहिए मेरे साथ। कैफे का मतलब होता है कि जहाँ पर आप बैठे हो, कॉफ़ी पी रहे हो। वैसे कैफे के बाद शुरुआत हुई थी किसकी, साइबर कैफे की, साइबर भी यानी कि कैफे भी, और अब उसके बाद यहाँ पर बने रहिए मेरे साथ। और कैफे में पहला गीत चटे बट्टे।

बना हुआ हूँ मैं आप लोगों के साथ, आपका हमराज, और है म्यूजिक कैफे। और म्यूजिक कैफे में अब ये इस घंटे हम लोग मनाने वाले हैं, ये भी स्पेशल डेडिकेटेड शो, यानी कि आज है वर्ल्ड ब्रेन डे। इसको आज वर्ल्ड ब्रेन डे बोला जाता है, और हेल्थ केयर इवेंट, ये ग्लोबल हेल्थ केयर इवेंट है जिसको ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 22 जुलाई को, यानी कि आज ही के दिन। तो तीनों अलग अलग घंटों में अलग अलग सेगमेंट आप लोगों के पास लेकर आया हूँ, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, आपकी न्यूरोलॉजिकल हेल्थ के लिए, ब्रेन डिसऑर्डर को प्रिवेंट करने के लिए, और आपकी इक्विटेबल एक्सेस को ट्रीटमेंट के लिए। तो वर्ल्ड ब्रेन डे आज मनाया जाता है ब्रेन हेल्थ और डिसेबिलिटी के लिए, यानी कि एक तरह से कहें तो मेरा मन ब्रेन हेल्थ एक्सेस फॉर ऑल। तो अब हम मन से रिलेटेड बातें और मन से रिलेटेड गाने, उससे जुड़े हुए गाने सुनेंगे। कहते हैं मन की गति कहीं ना जाए, जे को कहे पीछे पछताए। मन की गति कहीं नहीं जा सकती, और जो इसे कहता है पीछे पछताता है। मनन से सतह की गहराई में यात्रा शुरू होती है, नानक की सारी शिक्षाओं का सार ही मनन है। तो बस आपका मन किसके बारे में क्या बात कर रहा है, बात करते हैं सबसे पहले कि आपका मन किसी को चाहता क्यों है। इसलिए अपनी तरफ से ये पेश करता हूं मैं गीत। कह रहा था छोटा सा ब्रेक लूंगा और आऊंगा आप लोगों के पास।

0: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

बनाऊ आप लोगों के साथ। नाम तो आप जानते ही हैं और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल। हम बात कर रहे हैं हमारे दिमाग की, जिसके बारे में हम अक्सर सबसे कम सोचते हैं। एक घंटे तक हम लोग बात करेंगे एक ऐसी चीज के बारे में जो हमारे शरीर का सबसे अहम हिस्सा है, दिमाग की भी मन की भी। ब्रेन है और उसके अंदर है मन। अब दिमाग की बात सुनकर आपको लग सकता है कि आज का शो थोड़ा सा गंभीर होने वाला है, लेकिन नहीं, आज हम इसे बिल्कुल आसान भाषा में बिल्कुल अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर समझेंगे। क्योंकि हमारा दिमाग 24 घंटे काम करता है, लेकिन क्या कम काम करता है या ज्यादा काम करता है, या क्या कभी हम उसे आराम देते हैं? जरा सोचिए, सुबह उठते ही मोबाइल, फिर नोटिफिकेशन, फिर मैसेज, फिर काम की टेंशन, फिर सोशल मीडिया, फिर ट्रैफिक, और रात को सोने से पहले भी मोबाइल हाथ में। हम कहते हैं आज बहुत थक गया हूं, लेकिन कई बार शरीर से ज्यादा दिमाग थका हुआ होता है। और सबसे मजेदार बात, हम दिमाग को आराम देने के बजाय कहते हैं चलो थोड़ा सा इंस्टाग्राम देख लेते हैं। तो आज वर्ल्ड ब्रेन डे पर एक छोटा सा सवाल खुद से पूछिए, क्या मैं अपने दिमाग का उतना ही ख्याल रखता हूं जितना अपने शरीर का रखता हूं? मुझे जवाब दीजिएगा मैसेज पर। मेरा नंबर है 8657661071। बना हुआ हूं आप लोगों के साथ और पेश करता हूं मन ये मेरा।

और ये था मन ये मेरा, और आपके मैसेजेस अब मेरे पास आना शुरू हो गए हैं। ज़रूर आप लोगों के कुछ और जवाब मैं जानना चाहूँगा। प्रणव शिंदे लिखते हैं कि मस्तिष्क हमारी सोच का समुंदर है, छिपा हुआ है अनोखा जहाँ इसके अंदर। और मैं भी अपने मन का ख्याल रखता हूँ, हर दिन प्राणायाम करता हूँ, सकारात्मक सोच रखता हूँ यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग, दिमाग को फ्रेश रखने के लिए सुमधुर संगीत सुनता हूँ जो हर वक्त आकाशवाणी FM रेनबो पर प्ले होता है। और ऐसा ही कुछ पंकज मोहर जी ने भी लिखा है, विजेंद्र जी ने भी लिखा है कि वो इन्जॉय कर रहे हैं म्यूज़िक कैफ़े। और जी हाँ, हम लोग बात कर रहे थे आपके मन की। हम में से बहुत से लोग फिटनेस के लिए जिम जाते हैं, दौड़ते हैं, योग करते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ब्रेन हेल्थ भी हमारी ओवरऑल हेल्थ का उतना ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। अच्छी नींद, बैलेंस्ड खानपान और शारीरिक गतिविधि यानी कि आपकी एक्टिविटी और तनाव को संभालना, अपने लोगों से जुड़े रहना, ये सब हमारे दिमाग के लिए भी ज़रूरी है। और हाँ, अपने दिमाग को हर वक्त ऑन रखना भी कोई खास उपलब्धि नहीं है, कभी कभी कुछ नहीं करना भी ज़रूरी होता है।

आऊंगा आप लोगों के साथ और लेकर आऊंगा और भी बहुत खूबसूरत संगीत मन को लेकर, जैसा कि हम लोगों ने बात की थी। कभी कभी कुछ नहीं करना भी जरूरी है, एक बड़ा प्यारा सा ऐड आता ना, बिल्कुल वैसे ही, बस बैठिए, चाय पीजिए, खिड़की से बाहर देखिए और किसी दोस्त से बात कीजिए। दिमाग को कभी कभी कहना पड़ता है, भाई आज जरा थोड़ा सा आराम कर ले। वर्ल्ड ब्रेन डे का मकसद सिर्फ ब्रेन हेल्थ के बारे में बात करना नहीं है, इसका एक बड़ा उद्देश्य है कि लोगों को न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर यानी दिमाग और नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई बीमारियों के बारे में जागरूक करना। स्ट्रोक, मिर्गी, माइग्रेन, पार्किंसन जैसी कई स्थितियां इसमें शामिल हैं। और सबसे जरूरी बात है, इन समस्याओं को लेकर शर्म या गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को बार बार सिर दर्द होता है या एपिलेप्सी है या याददाश्त में बदलाव महसूस होता है या शरीर के किसी हिस्से में अचानक कमजोरी आती है तो इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। वक्त पर डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हेल्थ के मामले में एक बात हमेशा याद रखिए, गूगल सर्च डॉक्टर की जगह नहीं ले सकता है।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश। आप सबका स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
1: और मैं हूं अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत और गुरशब्द सिंह राहुल जी ने। लिखते हैं,
2: झाड़ू जब तक एक सूत्र में बंधी होती है तब तक वह कचरा साफ करती है, लेकिन वही झाड़ू जब बिखर जाती है तो खुद कचरा हो जाती है। इसलिए हमेशा संगठित रहें और बिखर कर कचरा न बने।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद एकता और संगठित रहने का सुंदर विचार भेजने के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। श्रोताओं, हमें पहला संदेश मिला है कोका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी का। लिखते हैं,
2: डॉक्टर कामिल बुल के 24 तारीख को सुने, बेल्जियम में जन्मे कैसे भारत को अपना कर्मभूमि बना लिया, रामचरितमानस पर शोध किया और कामिल बुलके से कामिल बुलके बाबा बन गए। बहुत अच्छा लगा इतनी अच्छी जानकारी और प्रस्तुति के लिए।

0: उमंग टीम को बहुत बहुत बधाई।
1: और अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा, राधिका, प्रभा देवी और मास्टर अल कबीर का।
0: भवानीगढ़ संगरूर पंजाब से परमिंदर सिंह रंधावा, लखनपाल रंधावा और सुरेंद्र कौर रंधावा जी का।
1: और गणेशवाड़ी कोल्हापुर महाराष्ट्र से संभाजी सुतार, चेतन सुतार और सारिका सुतार जी का।
0: पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, तनुजा देवांगन और ईशांत देवांगन।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। एक बार फिर से प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए के अंतर्गत आज की कड़ी। श्रोताओं इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं भारत के अनूठे मेलों की,
0: ऐसे मेलों की जो प्रयास है समुदायों को उनकी संस्कृति से जोड़ने का। इनके बारे में लोगों को अधिक पता नहीं है लेकिन वे अपने आप में सचमुच अद्भुत हैं, जीवंत हैं और प्रेरणा देने वाले भी। तो कल हमने चर्चा की थी असम राज्य के जॉनबील मेले की, जहाँ वस्तु विनिमय प्रणाली का आज भी प्रचलन है।
1: आज हम चलेंगे एक और सुंदर और मनोरम उत्तर पूर्वी भारत के पर्वतीय राज्य नागालैंड और जानेंगे एक और मेले के बारे में। इसे हॉर्नबिल मेले के नाम से जाना जाता है। तो विमलेश जी अब चर्चा को आगे बढ़ाइए।
0: जी अजीत जी, श्रोताओं हॉर्नबिल महोत्सव या मेला नागालैंड का सबसे प्रसिद्ध सांस्कृतिक मेला है। इसे त्योहारों का त्योहार यानी फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है। अजीत जी अब जानते हैं कि ये कब मनाया जाता है।
1: जी विमलेश जी, हॉर्नबिल मेला हर साल 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है।
0: जी
1: ये कोहिमा के पास किसामा हेरिटेज विलेज में आयोजित किया जाता है। लेकिन विमलेश जी एक स्वाभाविक प्रश्न मेरे मन में आता है और वो ये है कि इस उत्सव या मेले का नाम हॉर्नबिल क्यों पड़ा।
0: अजीत जी बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है आपने।
1: जी
0: इसका जवाब भी उतना ही सुंदर है। हॉर्नबिल एक पक्षी है जो अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। ये जबरदस्त उड़ान भर सकता है। इसके पंख इतने शक्तिशाली होते हैं कि जब ये उड़ता है तो उसके पंखों की फू फू जैसी आवाज दूर दूर तक सुनाई देती है।
1: जी विमलेश जी, पूर्वोत्तर भारत में विशेषकर नागालैंड में इस पक्षी को यानी हॉर्नबिल पक्षी को साहस, सम्मान और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है।
0: जी यही वजह है कि नगा परंपराओं में विशेषकर सर के आभूषणों में हॉर्नबिल पक्षी का प्रतिरूप अवश्य दिखाई देता है। आइए अब जानते हैं कि क्या होता है हॉर्नबिल मेले में।
1: श्रोताओं इस मेले में रंग बिरंगे पारंपरिक नृत्य देखने को मिलते हैं।
0: जी
1: जिनमें सबसे लोकप्रिय और आकर्षक है युद्ध नृत्य।
0: जी
1: युद्ध नृत्य में पुरुष योद्धा पारंपरिक हथियार लेकर नृत्य करते हैं। तेज ड्रम की ताल, वॉर क्राई और तालबद्ध पैरों की गति के साथ ये नृत्य होता है।
0: जी
1: विमलेश जी एक बहुत विशेष बात तो हम भूल ही गए थे, ये तो बता दें कि इस मेले के दौरान एक बड़ी खास प्रदर्शनी होती है जिसे मोरुंग कहते हैं।
0: जी
1: ये मोरुंग होता क्या है।
0: अजीत जी मोरुंग नागालैंड की जनजातियों का युवा आवास हुआ करता था। ये बांस और लकड़ी से बना हुआ बड़ा सामुदायिक भवन होता था।
1: जी प्रत्येक गांव में कम से कम एक मोरुंग अवश्य होता था। वहां जनजातीय इतिहास, युद्ध कौशल, वाद्य संगीत और लकड़ी के हस्त कौशल सिखाए जाते थे।
0: जी यहाँ हस्तशिल्प, हैंडलूम यानी हस्तकरघा, स्थानीय व्यंजन इत्यादि प्रचुरता से मिलते हैं।
1: श्रोताओं ये उत्सव नागालैंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रदर्शन है।
0: जी
1: यहाँ आकर लोग असली नागा जनजातीय जीवन, आतिथ्य और उनकी परंपराओं की ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। तो श्रोताओं ये थी जानकारी नागालैंड के बेहद खास मेले हॉर्नबिल उत्सव की।
0: जी
1: कभी नागालैंड जाएं तो इस मेले का आनंद जरूर लें।
0: जी
1: तो अब प्रस्तुत है आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है
0: मोरुंग किसे कहते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: मोरुंग किसे कहते हैं। 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने उत्तर व संदेश हमें भेज सकते हैं। और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो श्रोताओं हमारा पहला कार्यक्रम है सुंदरिया।
0: कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में एक प्यारी गाय सुंदरिया की कहानी बताई गई है और उसके माध्यम से बच्चों को संदेश दिया गया है कि पशुओं में भी भावनाएं और संवेदनाएं होती हैं।
2: एक समय की बात है, हरियाणा के एक गांव में एक किसान रहता था। नाम था हीरा सिंह। निर्धनता के कारण बड़ी मुश्किल से उसके परिवार का गुजारा चलता था। उसके पास एक गाय थी, नाम था सुंदरिया। उस गाय के कारण हीरा सिंह से गांव वालों को बड़ी ईर्ष्या होती थी। निर्धनता का ये हाल था कि हीरा सिंह सुंदरिया के लिए चारा भी नहीं जुटा पाता था। वो भी गाय को बहुत प्यार करता था। वो चाहता था कि किसी प्रकार गाय को अच्छा चारा मिल सके, लेकिन तंगी पीछा नहीं छोड़ती थी, इसलिए कई बार उसके मन में एक विचार आया।
3: अब तो सुंदरिया को पालना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। कहां से आएगा उसके लिए चारा? यहां तो परिवार के खाने के लाले पड़े हुए हैं। सोचता हूं उसे किसी धनी किसान को बेच दूं, कम से कम अच्छा चारा तो मिलेगा उसे।
2: लेकिन हीरा सिंह अपने बड़े बेटे जवाहर सिंह से डरता था, क्योंकि उसे सुंदरिया गाय से बहुत लगाव था। जवाहर सिंह सुंदरिया को प्यार से मौसी बुलाता था। समय बीतता गया और आखिर परिवार की दरिद्रता समाप्त करने के लिए हीरा सिंह नौकरी की तलाश में दिल्ली आ गया। वहाँ एक सेठ के यहाँ उसे चौकीदार की नौकरी मिल गई। एक दिन सेठ ने कहा,
4: हीरा सिंह, शहर में आजकल दूध की बड़ी किल्लत हो रही है।
3: जी मालिक, ये बात तो है।
4: पता नहीं जो दूध तुम दुकानों से लाते हो वो ठीक भी है या नहीं। बहुत मिलावट चल रही है। तुम तो हरियाणा के हो, सुना है वहां की गायें बड़ी अच्छी और दुधारू होती हैं। एक काम करो, तुम हमारे लिए किसी अच्छी गाय का प्रबंध कर दो।
3: जी मालिक, कोशिश करता हूं। वैसे एक गाय है मेरी निगाह में।
4: अच्छा,
3: ऐसी कि साक्षात कामधेनु, दूध भी 15 शेर से ज्यादा ही उतरता है और उसके 200 रुपए तक लग चुके हैं।
4: भाई, इतनी अच्छी गाय है तो 10 रुपए अधिक हम दे देंगे। ये लो 100 रुपए, बाकी तुम्हारे आने पर मिल जाएंगे।
3: जी मालिक।
2: दरअसल हीरा सिंह के मन में उसकी प्यारी गाय सुंदरिया ही थी। सोचने लगा, यहाँ आएगी तो अच्छा चारा भी मिलेगा और मैं उसकी सेवा भी कर लूंगा। हीरा सिंह उसी दिन गांव चला गया। जैसे तैसे अपने बेटे जवाहर को समझाया और गाय लेकर दिल्ली आ गया। सेठ जी ने गाय को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। ऐसी स्वस्थ सुंदर गाय उन्होंने पहले ना देखी थी। दूसरे दिन सेठ जी ने पास के एक ग्वाले को बुलाया और गाय उसके सुपुर्द कर दी। हीरा सिंह का दिल भरा जा रहा था। उसने सेठ जी से कहा,
3: सेठ जी, गाय की नौकरी पर मुझे ही लगा दीजिए, चाहे पगार कम ही दीजिए।
4: यह नहीं हो सकता हीरा सिंह। भाई, हमें तुम जैसा दूसरा ईमानदार और मेहनती चौकीदार कहां मिलेगा? तुम्हें तो यहीं ड्योढ़ी पर ही रहना होगा।
2: ग्वाले ने सुंदरिया को ले जाने के लिए पूरा जोर लगा दिया, लेकिन गाय टस से मस नहीं हुई। अपनी भोली आंखों से वो हीरा सिंह को ही देख रही थी, मानो कह रही थी, तुम्हें छोड़कर मैं कहां जाऊं। हीरा सिंह ने गाय को थपथपाया, पुचकारा और बोल उठा,
3: मेरी प्यारी सुंदरिया, अब चली जाओ ना, मैं यही तो हूं तुम्हारे पास। तुम चिंता ना करो, अरे मैं तुम्हें देखने आता रहूंगा, मेरी प्यारी सुंदरिया।
2: अनमने मन से सुंदरिया चल दी। लेकिन अगले ही दिन कुछ विचित्र हुआ। सेठ जी ने हीरा सिंह को बुलाया।
4: हीरा सिंह, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? आज गाय का 5 शेर दूध भी नहीं उतरा। तुम तो कहते थे कि 15 शेर से भी ज्यादा दूध मिलेगा।
3: सेठ जी, कल ही तो मैंने पूरा 15 शेर दूध दुहकर आपको दिया था, भला मैं झूठ क्यों बोलने लगा?
4: ये बात तो है, लगता है कुछ गड़बड़ है। चलो कल फिर देखते हैं।
3: जी सेठ जी।
2: लेकिन दूसरे दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। सेठ जी को गुस्सा आ गया, बोले,
4: हीरा सिंह,

0: तुमने सचमुच मुझे धोखा दिया है। गाय को ले जाओ और मेरे पैसे वापस करो।
1: लेकिन मालिक, पैसे तो मैं गांव भेज चुका हूँ और उसमें से काफी मकान की मरम्मत में खर्च हो गए। अब पैसे कहाँ से लौटाऊं?
0: तो ठीक है, पैसा मैं तुम्हारी पगार से काट लूंगा।
2: अब रोज रोज यही शिकायत आने लगी। कभी गाय दूध बहुत कम देती, कभी चारे को मुंह तक नहीं लगाती। हाँ, एक बात जरूर थी, जब हीरा सिंह उसे देखने जाता तो बहुत प्रसन्न हो जाती और चारा भी खा लेती। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से हीरा सिंह को निहारती रहती, मानो कह रही हो, मुझे वहाँ क्यों भेज दिया। एक रात की बात है, हीरा सिंह अपने कमरे में सो रहा था कि तभी
1: सुंदरिया, तुम मेरी प्यारी सुंदरिया।
2: वो अपराधी भाव से उसे देख रही थी, मानो कह रही हो, क्षमा करना, मेरा वहां मन नहीं लगा, इसलिए रस्सी तोड़ कर आई हूँ। मुझे तो तुम्हारे संग ही रहना है। उस मूक गाय की आंखों में वेदना थी। हीरा सिंह भाव विभोर हो उठा। वो सुंदरिया के गले से लिपट कर देर तक सिसकता रहा।
1: अब तू कहीं नहीं जाएगी, हम कहाँ चलेंगे? मैं अपराधी हूं कि मैंने तुम्हें बेच दिया, लेकिन सुंदरिया, वो तो तुम्हारे भले के लिए ही तो था। लेकिन अब हम साथ रहेंगे। हाँ, मैं तुम्हें कभी अपने से अलग नहीं करूंगा। मैं सुबह ही सेठ जी से बात करूंगा।
0: आओ हीरा सिंह, कुछ बात बनी? गाय कैसी?
1: सेठ जी, मैं गाय को आज ही गांव ले जाऊंगा।
0: लेकिन उसके लिए जो पैसे तुमने लिए हैं, उनका क्या होगा?
1: सेठ जी, मैं उसे चुकाने के लिए मुफ्त में आपकी चाकरी करने के लिए तैयार हूं। रुपए जब चुकता हो जाएं, तो मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं भी छुट्टी कर लूंगा। सुंदरिया का दुख मुझसे नहीं देखा जाता सेठ जी।
2: इतना कहकर उसने गाय की डोर थाम ली और कहा,
1: सेठ जी, गाय को गांव छोड़कर मैं आपकी सेवा में फिर आ जाऊंगा और रुपए वसूल होने तक मैं आपके यहाँ काम करूंगा। नमस्ते।
2: हीरा सिंह ने गाय को पुचकारा, थपथपाया और चलने लगा। सेठ जी का मन भी भर आया था, कहने लगे,
0: हीरा सिंह, इस प्यारी गैया के प्रति तुम्हारा प्रेम देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। अरे, तुमसे यहां मुफ्त में काम करवाकर क्या मुझे पाप नहीं लगेगा? मान लो कि मेरे रुपए भी वसूल हो गए। जाओ हीरा सिंह, जाओ।
1: जी सेठ जी।
0: खुशी से जाओ हीरा सिंह, और हाँ, सुंदरिया का खूब ख्याल रखना, और जब कभी भी समय मिले हमसे मिलने जरूर आना।
1: जी, जी। धन्यवाद सेठ जी।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम सुंदरिया। आशा है कि आपको जरूर ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है मेरा प्यारा दोस्त।
4: नमस्कार श्रोताओ, प्रेरक कहानियों की श्रृंखला में आपका स्वागत है।
5: ये कहानी है पूर्वोत्तर भारत के एक राज्य मेघालय की। लेकिन कहानी सुनने से पहले आइए लेते हैं मेघालय राज्य की थोड़ी जानकारी। मेघालय शब्द दो शब्दों के मेल या संधि से बना है, मेघ और आलय।
4: मेघ यानी बादल और आलय।

0: यानी घर, तो मेघालय का अर्थ हुआ बादलों का घर। साथियों, प्राकृतिक सुंदरता में मेघालय का कोई सानी नहीं है।
1: जी हाँ साथियों, यहाँ जब तब अनायास ही उमड़ते बादल, ऊंचे ऊंचे पर्वत, कल कल करती नदियाँ और हरे भरे जंगल पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। गारो, खासी और जयंतिया यहाँ की मुख्य जनजातियाँ हैं।
0: मेघालय की राजधानी है शिलांग। ये कहानी शिलांग की है।
1: यूजीन लगभग 15 वर्ष का एक किशोर है। आज शिलांग शहर के पुराने बाजार में यूजीन चला जा रहा था। उसकी आंखें लगातार दुकानों के साइन बोर्ड्स पर ही टिक रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो वो कोई खास दुकान खोज रहा हो।
2: यहीं कहीं तो थी वो दुकान। कहाँ है वो? अब ये तो रही वो फूल वालों की दुकान। उसके बाद हाँ, वो रही।
1: उसे वो दुकान मिल गई थी। साइन बोर्ड पर एक पिल्ले की सुंदर सी तस्वीर थी और उसके नीचे लिखा था, पपीज फॉर सेल।
0: यूजीन को कुत्तों से बहुत लगाव था। उसकी बहुत इच्छा थी कि वो भी एक प्यारा सा कुत्ता पाले जो उसका दोस्त बन सके और उसके साथ खेल सके।
1: बात वास्तव में ये थी कि स्कूल में सहपाठी यूजीन के साथ रहने और खेलने से थोड़ा कतराते थे।
0: कुछ सोचकर वो दुकान में दाखिल हुआ।
2: हाँ, यहां से अंदर चलता हूं। अरे वाह, कितनी सुंदर दुकान है और ले प्यारे प्यारे पपीस भी हैं। आजा आजा।
1: उसने कई बार अपने घर में कहा था कि वो एक प्यारा सा पिल्ला पालना चाहता है, लेकिन उसकी सुनी नहीं गई थी। किसी पशु को पालना काफी जिम्मेदारी का काम होता है। एक पिल्ले को पालने के लिए यूजीन के माता पिता तैयार नहीं थे।
0: लेकिन अब यूजीन बड़ा हो गया है। अब वो खुद पिल्ले का ध्यान रख सकता है। इसीलिए आखिरकार वो मान ही गए। और आज
1: यूजीन पिल्ला खरीद सकता है अपनी पसंद का। यूजीन सीधा काउंटर पर दुकानदार के पास चला गया और बोला,
2: नमस्ते मैडम।
3: नमस्ते बेटा।
2: मेरा नाम यूजीन है। मैं एक पिल्ला खरीदना चाहता हूँ। क्या आप मुझे उसका दाम बताएंगी?
3: देखो बेटा यूजीन, हमारे पास तो ढेर सारे पपीज हैं, सभी नस्ल के।
2: ओह।
3: लेकिन बेटा ये बताओ, क्या तुम सच में खरीदना चाहते हो?
2: जी बिल्कुल, पर आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं?
3: बेटा बात ये है कि तुम्हारे साथ कोई बड़ा तो है नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम बस देखो और चले जाओ?
2: नहीं,
3: क्योंकि यहाँ बहुत से ऐसे बच्चे आते हैं, देखने की जिद करते हैं, सारे बिल्ले देखते हैं और अंत में लिए बिना ही चले जाते हैं। इससे हमारा समय बर्बाद होता है ना, तो।
2: नहीं ऐसा नहीं है, मैं उन बच्चों की तरह नहीं हूँ। मैं सच में खरीदूंगा, आप उनके दाम बताइए तो सही।
3: यूजीन देखो बेटा, सबसे कम दाम के हमारे पास लगभग 2000 रुपए के पिल्ले हैं, फिर 3000 और ऐसे ही। मेरा मतलब नस्ल के हिसाब से और भी महंगे हैं।
2: अच्छा,
3: क्या तुम इतना पैसा दे पाओगे?
2: ओहो, अभी इस समय तो मेरे पास 1500 रुपए ही हैं। अब ये तो मैं आपको अभी तुरंत दे सकता हूँ, बाकी पैसे आपको कल दे सकता हूँ। मैं पापा से बात कर चुका हूँ, वो मुझे मेरी पसंद का पिल्ला लेने के लिए कह रहे थे। आप मुझसे कल तक ले लीजिए।
3: बेटा ऐसे तो बात नहीं बनेगी ना, समझो मेरी बात। वो क्या है कि अगर अभी तुम्हें पपी चाहिए तो तुम्हें पूरा पैसा भी अभी ही चुकाना होगा, समझे ना?
2: ठीक है मैडम, पर आप मुझे पपी दिखाइए तो सही, मैं आपको इसका मूल्य चुका दूंगा आज ही शाम तक। अब आया हूं तो पसंद करके ही जाऊंगा। अभी 1500 दूंगा और जब बाकी पैसे लाऊंगा तब मैं आपसे पिल्ला ले लूंगा।
3: ठीक है। शेल्बिलिन, शेल्बिलिन, अरे कहाँ हो भाई?
4: हाँ जी, बताइए।
3: देखो सारे पपीज ले आओ, ग्राहक कब से खड़े हैं, ध्यान रखा करो।
4: हाँ हाँ अभी लाते हैं, बस एक मिनट।
0: थोड़ी ही देर में सामने एक छोटा सा दरवाजा खुला और 5-6 प्यारे प्यारे पिल्ले कूं कूं करते हुए सामने आए। वो ऐसे लग रहे थे मानो ऊन के गोले हों। सब के सब बहुत ही प्यारे लग रहे थे।
5: यूजीन ने देखा कि उनमें एक पिल्ला था जो उछल कूद नहीं मचा रहा था। उसके सामने के दोनों पांव तो काम कर रहे थे लेकिन पीछे के दोनों पांव घिसट रहे थे। वो धीरे धीरे घिसटता हुआ सबसे पीछे पीछे आ रहा था।
3: अरे शेल्बिलिन, तुमसे कितनी बार कहा है इसे मत लाया करो, तुम्हें ये छोटी सी बात समझ नहीं आती क्या? तुम फिर से इस पिल्ले को ले आए, हटाओ इसे।
4: ये तो बहुत शैतान है, पीछे पीछे आ ही जाता है, अभी ले जाता हूँ इसे, चलो शाबाश वापिस चलो।
2: एक मिनट, अब इसे क्या हुआ, ये ऐसे क्यों चल रहा है? आजा आजा इधर आ।
3: ये जन्म से ऐसा ही पैदा हुआ है, सही होता तो इसकी बहुत कीमत होती, अब तो बोझ ही है हमारे लिए।
2: मैं इसे खरीदना चाहता हूँ, कितनी कीमत होगी इसकी?
3: हैं? अच्छा समझ गई बेटा, समझ गई, मुझसे मजाक कर रहे हो ना? अरे ये देखो, ये वाला कितना सुंदर है। महंगा तो है लेकिन दूर दूर से लोग आते हैं इस वाले पिल्ले को खरीदने के लिए।
2: नहीं ये नहीं चाहिए मुझे। वो वाला कितने का है?
3: अरे बेटा कैसी बातें करते हो, ये बेकार है। अरे बिन पैर का पिल्ला, बहुत से लोग आते हैं इस दुकान में, हम तो इसे छुपाई देते हैं।
2: क्या?
3: वैसे भी ये भला किस काम का, कौन खरीदेगा इसे?
2: मैडम मैं खरीदूंगा इसे, मैं इसे ही खरीदूंगा।
3: मगर क्यों? तुम्हें पता है ये तुम्हारे साथ खेल नहीं पाएगा, तुम आखिर इसे क्यों खरीदना चाहते हो?
2: मुझे यही चाहिए।
3: देखो बेटा मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम अभी जोश जोश में ऐसा कह रहे हो, शायद इसकी हालत पर तुम्हें दया आ रही होगी, है ना?
2: नहीं।
3: लेकिन सोचो कुछ ही दिनों में अगर ये बीमार हो गया तो तुम इसे सड़कों पर या कहीं और छोड़ दोगे। और देखो अगर ऐसा हुआ तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा।
2: जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा इसके साथ, मैं इसके साथ कुछ नहीं होने दूंगा, ये अपने इन्हीं कमजोर पैरों पर चलेगा, चलेगा ना मेरे साथ, बनेगा ना मेरा दोस्त। अल्ले।
3: अच्छा ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो फिर इसे यूं ही ले जाओ।
2: यूं ही?
3: हाँ, अब इसकी भला क्या कीमत?
2: क्या मतलब? अगर इसकी टांगे खराब हैं तो क्या इसकी कोई कीमत नहीं है?
3: अच्छा अच्छा समझी, स्वाभिमानी हो, मुफ्त में कुछ नहीं लोगे, अच्छी बात है। तो ऐसा करो इसके तुम बस 50 रुपए दे दो, खुश?
2: 50 रुपए क्यों? ये तो इसका अपमान हुआ ना, इस नस्ल के दूसरे पिल्लों की जितनी कीमत है वो ही इसकी भी है। मैं आपको इसके पूरे पैसे दूंगा।
3: पर बेटा ये तो
2: बताइए ना, इसकी नस्ल की कितनी कीमत है?
3: बहुत

0: महंगी है। 2000 रुपए, मेरा मतलब है कि।
1: तो यही इसकी कीमत भी है। अब ये रहे 1500 रुपए। और अब ये मेरा हुआ, मेरा दोस्त है ना, है ना मेरा दोस्त तू, यूजीन का दोस्त। तुम्हें शाम तक ले जाऊंगा दोस्त।
0: देखो बेटा, मैं तुम्हारी भावनाओं और जानवरों के लिए तुम्हारे इस प्यार का बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन बेटा क्या मैं जान सकती हूँ कि आखिर तुमने इस पपी में ऐसा क्या देखा कि तुमने इसको ही चुना, वो भी इतनी कीमत देकर? आखिर क्यों बेटा?
1: आप पूछते हैं क्यों? ये देखिए मैडम, ये देखिए।
2: यूजीन नीचे झुका और उसने धीरे धीरे अपनी पैंट ऊपर उठाई। दुकानदार ने देखा यूजीन का बायां पांव घुटने से कटा हुआ था, नीचे का आधा पैर कृत्रिम था, वहां धातु का पांव लगा हुआ था जिसके सहारे वो थोड़ा मुश्किल से लेकिन बिना सहारे के चल सकता था।
0: अरे बेटा, ये तुम्हारा।
1: जी मैडम, आधा पैर नहीं है मेरा। अब बताएं मेरी क्या कीमत है आप जैसे लोगों के बीच? मैं भी इस पपी की तरह कूद नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, तो हो गया ना मैं भी बेकार बोझ।
0: अरे नहीं नहीं बेटा, कैसी बातें करते हो, वो तो मैं बस।
1: मैं भी मौका मिलते ही सबसे खुलना मिलना चाहता हूँ, लेकिन शायद मेरी ये कटी टांग ने मुझे सबके बराबर नहीं होने दिया। और 5 साल की उम्र से जानता हूँ मेरे साथ कोई नहीं खेलता, ये सब मैं जानता हूँ, ये सब मुझे पता है
0: बेटा।
1: इसलिए मुझे लगता है कि ये पपी मुझे मेरी कटी टांग से नहीं पहचानेगा, मुझे मेरी दोस्ती और मेरे प्यार से पहचानेगा। मैं नहीं चाहता ये अभी से मेरी तरह आजादी को, प्यार को तरसे। आज से, अभी से ये मेरा हुआ। आजा मेरा दोस्त, आजा।
0: यूजीन बेटा, इस पपी को तुमसे बेहतर भला कौन समझेगा, और शायद ये किसी और के साथ उतना प्यार भी ना पा सके जो इसका अधिकार है। इसे तुम्हें सौंपकर मैं भी निश्चिंत रहूंगी। ये लो।
3: नमस्कार, आकाशवाणी छत्रपती संभाजीनगर केंद्राच्या दुपारच्या बातमीपत्रात मी जीवन दराडे आपलं स्वागत करतो। नीट पेपरफुटी प्रकरणासह विविध मुद्द्यांवरून विरोधकांनी केलेल्या गदारोळामुळे संसदेचं कामकाज आजही बाधित झालं। लोकसभेत कामकाज सुरू होताच विरोधकांनी घोषणाबाजी करण्यास सुरुवात केली। अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सदस्यांना कामकाज सुरळीत चालू देण्याचं आवाहन केलं, मात्र गदारोळ वाढत गेल्यानं सदनाचं कामकाज सुरुवातीला 12 वाजेपर्यंत आणि नंतर 2 वाजेपर्यंत स्थगित करण्यात आलं। राज्यसभेत सभापती सी पी राधाकृष्णन यांनी सिक्कीममधल्या नामची जिल्ह्यात बांधकाम सुरू असलेल्या बोगद्यात झालेल्या दुर्घटनेत मृत्यूमुखी पडलेल्यांबद्दल तीव्र शोक व्यक्त केला। या दुर्घटनेत मृत्यू पावलेल्यांच्या कुटुंबियांप्रती त्यांनी संवेदना व्यक्त केल्या। देशातल्या पहिल्या स्वदेशी विकसित हायड्रोजन रेल्वेच्या प्रारंभाबद्दल सभापतींनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि या प्रकल्पाशी संबंधित सर्वांचं अभिनंदन केलं। त्यानंतर विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी नीट पेपरफुटी प्रकरण आणि दिल्लीतल्या आंदोलनाचा मुद्दा उपस्थित केला। त्यावरून झालेल्या गदारोळामुळे सभापतींनी सदनाचं कामकाज दुपारी 2 वाजेपर्यंत स्थगित केलं। आर्थिक वर्ष 2026-27 राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी SDRF अंतर्गत महाराष्ट्राला 5,718 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे। केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण राज्यमंत्री रामनाथ ठाकूर यांनी काल लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली। यामध्ये केंद्र सरकारचा 4,288 कोटी आणि राज्य सरकारचा 1,429 कोटी इतका वाटा आहे। दरम्यान सेंट्रल रिसर्च इन्स्टिट्यूट ऑफ ड्रायलँड ॲग्रिकल्चर ICARनं सरासरीपेक्षा कमी पावसाची शक्यता

0: आकाशवाणी एफ एम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: इसी म्यूजिकली योर्स पर बना हुआ हूँ मैं आप लोगों के साथ, और अब वक्त हो गया है, जी हाँ, उसी शो का, उसी प्रोग्राम का जिसको आप बड़े तल्लीनता से सुनते हैं और आपको इंतजार रहता है क्योंकि इसमें आपके गीत भी रहते हैं, गाने भी रहते हैं जिसकी आप फरमाइश करते हैं। लेकिन आज इसमें छोटा सा प्यारा सा एक फेरबदल भी मैंने किया है क्योंकि आज है हिट एंड हॉट में एक और बात, यानी कि आज मैंगो डे भी मनाया जाता है, तो हम मैंगो डे पर भी बात करेंगे साथ साथ। और अब मैं पहले पेश करूंगा ये एक गीत जिसकी मुझसे फरमाइश की थी प्रमोद जी ने, और वो है हुस्न हाजिर है लता मंगेशकर की आवाज़ में।

बताऊँ मैं आप लोगों के साथ आपका अमराज आरजे अपना, और हाँ शो है आज हेट एंड हॉट नेशनल मैंगो डे। दोस्तों दोपहर का वक्त है और अगर इस वक्त आपके सामने एक प्लेट में गर्मा गर्म खाना और दूसरी तरफ एक कटोरी में ठंडा ठंडा आम रखा हो तो बताइए पहले क्या खाएंगे? खाना? अरे वाह कमाल है, आप तो बहुत संस्कारी हैं। लेकिन नहीं, अगर मैं कहूँ कि खाना बाद में भी खाया जा सकता है, आम का सीजन चला गया तो फिर सिर्फ यादें रह जाएंगी। तो हाँ आम पहले। मैं हूँ आपका आरजे और आज 22 जुलाई को हम मना रहे हैं नेशनल मैंगो डे यानी राष्ट्रीय आम दिवस। वैसे आम हमारे लिए सिर्फ एक फल नहीं है, आम एक भावना है। आम देखकर बचपन याद आता है, आम खाकर गर्मी की छुट्टियां याद आती हैं और आम का दाम सुनकर कभी कभी महंगाई भी याद आ जाती है। आज का पूरा सेगमेंट समर्पित है उस फल के नाम जिसे दुनिया किंग ऑफ फ्रूट्स कहती है। और आज हम आम को सिर्फ खाएंगे नहीं, आम पर थोड़ी बातें भी करेंगे। आम बनाम बाकी फल। अब देखिए ना, हर फल की अपनी एक पर्सनैलिटी होती है। सेब बहुत शरीफ है, अंगूर थोड़ा सोफिस्टिकेटेड है, संतरा बड़ा रिफ्रेशिंग है और केला हमेशा अवेलेबल है। लेकिन आम, आम की एंट्री अलग है। आम कहता है सीजन मेरा है, इंतजार तुम्हारा। और आम की सबसे बड़ी खूबी क्या है? ये फल ऐसा है जिसे खाने के लिए आपको किसी फैंसी रेस्टोरेंट की जरूरत नहीं है। बालकनी में बैठ जाइए, आम काटिए और फिर जो होगा वो होगा राष्ट्रीय स्तर का आनंद। हालांकि आम खाने के बाद हाथ धोने के लिए एक बाल्टी पानी चाहिए और कपड़े भी बदलने पड़ सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आम के लिए इतना तो बनता है। इस गीत की फरमाइश मुझसे की थी यहां पर पंकज जी ने। घर से निकलते ही तो पेश करता हूं ये गीत।

मैं हूं आप लोगों के साथ। जी हाँ, आपका हमराज यहाँ 107.1 मेगाहर्ट्ज़ एफएम रेनबो पर, और हम लोग बात कर रहे हैं जी हाँ नेशनल मैंगो डे को लेकर भी, और हिट एंड हॉट में तो आपके मनपसंद गाने चल ही रहे हैं।

कहने सुनने के लिए और भी काफी सारी बातें हैं, मुझे बहुत कुछ बताना था, लेकिन क्या है कि वक्त कम रहता है और आपकी फरमाइश बहुत ज्यादा रहती है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप सबकी फरमाइश प्ले कर पाऊँ, अगर ना हो पाए तो प्लीज मैं आप सभी को डेडिकेट करूंगा। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए हैं आज, अभिजीत हैं, विजेंद्र हैं, राकेश, राजेंद्र, प्रदीप, मुकेश, गुरमीत, फिरोज जी, सुनील गायकवाड़, शुभ लक्ष्मी, लालगिरी, संदीप कौर और बहुत ही सारे लोग। जी हाँ, थैंक यू सो मच कि आपने इतने सारे मैसेजेस के दिए थे हम लोगों को, और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि आपके लिए सॉन्ग्स प्ले कर पाएँ। और आज मेरे फेवरेट सिंगर, प्रिय सिंगर, ये मुझे बात पता थी, मैंने सोचा कि आपको बाद में बताऊं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा था कि एक गीत ज़रूर लेकर आऊं। मुकेश चंद्र माथुर जी का जन्मदिन भी है आज, उनको भी हम अपनी तरफ से नमन करते हैं, याद करते हैं, और बस उनकी याद में एक गीत ज़रूर लेकर आएंगे, जो राजन जी ने भी फरमाइश की थी, जीना यहाँ मरना यहाँ, और उसके बाद राकेश जी ने कहा था जहन नसीब, तो दोनों गीत बैक टू बैक, और उसके बाद कुछ और भी गीत।

आप लोगों के साथ। और आज हमारे यहाँ के एक और आरजे रविन के बेटे शौर्य का जन्मदिन है, उन्हें अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और साथ साथ प्रणव शिंदे ने मुझसे इस गीत की फरमाइश की थी, ये भी पेश करता हूँ, चुनरी उड़ी सजन। साथ कैसा लगा हमारा शो, हमें अपने फीडबैक जरूर भेजिएगा। और अब मेरे चलने का वक्त हो चला है, सभी जगहों पर आप लोगों को मिल जाऊंगा, मुझे खोज सकते हैं आप लोग सोशल मीडिया पर। और बस हम लोगों को याद रखिए, हम लोगों के साथ बने रहिए। स्टे ट्यून्ड बी विद अस।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में किसी भी नियम के तहत चर्चा के लिए तैयार। सरकार ने कहा, युवाओं के भविष्य की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। युद्धपोत INS मालवन भारतीय नौसेना में शामिल। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले दो दिनों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। और चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अलवी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार मॉनसून सत्र के पहले दिन से ही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस चर्चा के लिए नियमों का निर्धारण किया जाना चाहिए। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा प्रश्न पत्र पर गहन चर्चा चाहती है। उन्होंने कहा कि बहस जितनी भी लंबी चले उतनी लंबी होनी चाहिए और यथाशीघ्र शुरू होनी चाहिए। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार ने विपक्षी दलों को इस मुद्दे पर खुली चर्चा के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने इस तरह की बाधाएं खड़ी की जिससे प्रतीत होता है कि वे संवाद में शामिल नहीं होना चाहते।
1: देखिए, जो ऑपोजिशन पार्टी बोलना चाहते वो तो बोलना ही है चर्चा के दौरान, हम मना नहीं कर सकते हैं। लेकिन चर्चा को रोकने के लिए आप अगर कंडीशन डालेंगे तो इसका मतलब आप चर्चा नहीं चाहते हैं। हमने जब खुले दिल से ऑफर किए सरकार की ओर से कि हम चर्चा चाहते हैं, तो उसको व्यवधान डालने के लिए कोई कंडीशन ऐसा डालेंगे ताकि चर्चा ही ना हो, ये तो ठीक बात नहीं है।
0: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास के पास विरोध प्रदर्शन करना विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को दर्शाता है।
2: संवैधानिक पद पे रहकर

0: करके संविधान की गरिमा को तार तार किया। उनका ये आचरण बहुत ही खतरनाक मंशा से वो भारत में दूसरे देशों का नकल करके यहाँ उपद्रव कराना चाहते हैं।
1: भाजपा सांसद डॉक्टर सतीश पूनिया ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन करके कांग्रेस पार्टी पर अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। इस बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि विद्यार्थियों का संघर्ष वास्तविक है और वे बदलाव की मांग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज कहा कि केंद्र सरकार विद्यार्थियों के साथ है और देश के युवाओं के भविष्य की रक्षा करना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने युवा नेतृत्व वाले विकास के मंत्र को विकसित भारत को मजबूत करने की नींव बनाया है।
2: आप सब जानते हैं कि नीट जैसा एग्जाम जिसमें 20 से 22 लाख कैंडिडेट्स अपियर होते हैं उसकी तैयारी में 6 महीने लगते हैं, लेकिन मात्र 37 डेज में नीट का री एग्जामिनेशन किया गया और रिजल्ट भी मात्र 25 दिन में आप सभी के सामने ला खड़ा कर दिया गया। जो री एग्जामिनेशन हुई उसमें टेक्नोलॉजी को लेवरेज करा गया ताकि कहीं पर भी अगर किसी भी प्रकार का लूप होल हो उसको कर्ब किया जाए, उसको प्लग इन किया जाए।
1: सुश्री स्वराज ने बताया कि सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पेपर लीक के 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया और अब वे सभी जेल में हैं। उन्होंने कहा कि आरोपियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा कल प्रधानमंत्री आवास के गेट के बाहर बिना अनुमति धरने पर बैठने की कड़ी निंदा की है। नई दिल्ली में भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास की गरिमा को जानते हुए भी श्री गांधी ने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया। भाजपा सांसद ने सुरक्षा प्रोटोकॉल के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा सर्वोपरि है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले और विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए और राज्यसभा दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग करने का आग्रह किया। इससे पहले जब लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू करने के लिए एकत्रित हुई तो अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध का मुद्दा उठाया। श्री बिड़ला ने विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा। इस कारण लोकसभा को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का मामला उठाया। अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि सरकार इस मामले पर चर्चा के लिए तैयार है और चर्चा के समय को लेकर सभी को एकमत होना चाहिए। हंगामा जारी रहने पर श्री बिड़ला ने सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। राज्यसभा में भी यही स्थिति देखने को मिली। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद जब सदन दोबारा शुरू हुआ तो विपक्ष ने नीट मामले पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। उपसभापति हरिवंश ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रश्नकाल संसदीय कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये सदस्यों का अधिकार है।
3: आजादी के 50 साल बाद सदन ने यह संकल्प लिया था कि किसी भी हालत में क्वेश्चन आवर और जीरो आवर चलाएंगे। ये मेंबर्स के आवर है। आपके प्रश्नों को के उत्तर तैयार करने में कितना श्रम जाता है और जनता का धन जाता है आप इसकी कल्पना करिए। आपको प्रश्न पूछने का अवसर मिलता है, प्लीज अपनी सीट पर बैठिए और क्वेश्चन आवर चलने दीजिए।
1: बार बार अपील करने के बावजूद विपक्षी सदस्यों ने उपसभापति की सलाह पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण सदन को दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट।

0: कृषि उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है। इस समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर एयर चीफ मार्शल ने आत्मनिर्भरता की दिशा में नौसेना के प्रयासों की सराहना की।
1: आत्मनिर्भर भारत जो हमने एक सपना देखा है, हम उसके बहुत करीब आई जा रहे हैं। बहुत जल्दी इंडियन नेवी ने ये सपना अपना लिया था, हम लोगों ने देर करी है बल्कि, बिकॉज वेरियस सेक्टर्स टेक डिफरेंट टाइम्स टू ग्रो एंड आई थिंक इन एज फार एज नेवल शिप बिल्डिंग इज कंसर्न इंडिया हैज ऑलवेज हैड एन एज एंड वी हैड कैरीड आवर लेगेसी फॉरवर्ड एंड इन मेकिंग शिप्स, सो वेरी गुड प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन आत्मनिर्भरता एज फार एज शिप बिल्डिंग इज कंसर्न।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि IASV त्रिवेणी पर सवार होकर पहली बार सभी सेनाओं की महिला सदस्य समुद्री अभियान समुद्र प्रदक्षिणा ने न केवल पृथ्वी का चक्कर लगाया बल्कि इस असाधारण उपलब्धि से करोड़ों भारतीयों को गौरवान्वित भी किया। उन्होंने IASV त्रिवेणी को आत्मनिर्भर भारत और भारत के नवाचार क्षमताओं और आत्मविश्वास का जीवंत उदाहरण बताया। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज फिलीपींस के मनीला में आयोजित क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। एक संयुक्त वक्तव्य में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई, साथ ही आसियान की एकता और केंद्रीय भूमिका के लिए अपने अटूट समर्थन की पुष्टि की।
2: In this era of volatility and disruption,
3: उथल पुथल के इस दौर में आपूर्ति श्रृंखला पर सबसे अधिक दबाव दिख रहा है। ऊर्जा, भोजन और स्वास्थ्य सुरक्षा को अब हल्के में नहीं लिया जा सकता। इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना बहुत जरूरी है। वर्ष 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष के तौर पर मनाया जाएगा। साथ ही भारत और आसियान दोनों ही अपने भविष्य को लेकर उम्मीद से भरे हैं, इसलिए चुनौतियों का सामना करते हुए भी हमें मौकों पर पूरी तरह ध्यान देना चाहिए।
2: इवन वाइल एड्रेसिंग चैलेंजेस।
0: बैठक के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बैठक में भारतीय अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा है कि ईरान को हुर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण की अनुमति देना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और नौवहन की स्वतंत्रता के लिए एक बेहद खतरनाक कदम होगा। डॉक्टर जयशंकर ने आज फिलीपींस के मनीला में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठकों के दौरान फिलीपींस, रूस और सिंगापुर के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने गुजरात, महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में कल तक मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश होगी। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। 16 जिलों में पानी भरा हुआ है। राज्य में बाढ़ में 21 और लोगों की मौत हो गई है, जिससे मृतकों की कुल संख्या 31 हो गई है।
4: आधिकारिक रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य में 872 गांव अभी भी जलमग्न हैं और 5,64,000 से भी अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। 24,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि पानी में डूबी हुई है। कामरूप और कामरूप महानगर जिलों में भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, जहां 4,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। राज्य सरकार ने 71 राहत शिविर और 202 राहत वितरण केंद्र स्थापित किए हैं। इन शिविरों में 12,000 से अधिक लोगों को आश्रय दिया गया है, जबकि 1,00,000 से अधिक प्रभावित लोगों को राहत सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। NDRF, SDRF, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज तथा स्थानीय प्रशासन की टीमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और राहत कार्य में लगातार जुटी हुई है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: जम्मू कश्मीर में कटरा और त्रिकुटा पहाड़ियों में खराब मौसम के कारण आज लगातार चौथे दिन भी श्री माता वैष्णो देवी यात्रा

स्थगित रही। चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के आयुष शेट्टी ने आज पुरुष सिंगल्स में इंडोनेशिया के अलवी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन भी आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 1% की गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 753 अंक गिरकर 76,717 पर और निफ्टी 202 अंक की गिरावट के साथ 23,986 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में किसी भी नियम के तहत चर्चा के लिए तैयार। सरकार ने कहा, युवाओं के भविष्य की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। युद्धपोत आईएनएस मालवन भारतीय नौसेना में शामिल। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्रों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

बिखावी कोड़ी न अरे वांगी न दौड़ का जोड़ी न काकड़ी बिखावी कोड़ी न गादर नी मुड़ा दूधी दूध घोड़ा पाव क्या।

0: चाचा क्या हुआ?
1: कोमड़ी आधी का अंडा हो,
0: अंडा अंडा कोमड़ी
1: पतला का चाचा ठंडा हो, कोमड़ी आधी का अंडा हो, उत्तर सांगा निकाय पण मांगा, दाऊ न दाऊ माला डंडा हो, पतला का चाचा ठंडा हो, कोमड़ी आधी का अंडा हो, उत्तर सांगा निकाय पण मांगा, दाऊ न गाव माला डंडा हो, तला मजे न राहू सारे हसबू या दुनियेला, तला मजे न राहू सारे हसबू या दुनियेला।

पाए कन्हैया या चीवड़िया ची माया घर मध्य झरनी यही आनी बाणी।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: ख्वाब ने आंखें खोली हैं, क्या मोड़ आया है कहानी में। वो भीग रही है बारिश में और आग लगी है पानी में।

हेलो हाय नमस्ते, मैं हूँ आरजे स्वेच्छा। आप सुन रहे हैं 107.1 एफएम रेनबो। समय हो रहा है ठीक 5:08, जो कि होता है हमारे लव यू जिंदगी प्रोग्राम का। मौसम इतना अच्छा हो रहा है, मैं अभी जब लोकल से आ रही थी तो मैं एक बात सोच रही थी, दिन का सबसे खूबसूरत वक्त कौन सा होता है। तो किसी के लिए सुबह होती है, किसी के लिए शाम, किसी के लिए रात, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि शाम का अपना ही जादू होता है। क्योंकि सुबह हम घड़ी देखकर भागते हैं और दोपहर काम देखकर, लेकिन शाम जैसे कहती है अभी थोड़ा बैठ भी जाओ। शाम होते ही आसमान का रंग बदलने लगता है और हवा थोड़ी ठंडी लगने लगती है, चाय की याद भी आने लगती है, और अगर सफ़र में हो तो कान खुद ब खुद अच्छे गानों की तलाश करने लगते हैं। तो कोई बात नहीं, सफ़र में ना सही, ट्रैफिक में हो, घर पे हो, ऑफिस से लौट रहे हो या कहीं भी हो, एफएम रेनबो है आपके साथ। तो चलिए इसी खूबसूरत शाम के साथ सुनते हैं अगला गाना।

जी, तो शाम का समय हो चुका है 5:18 और लव यू जिंदगी प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें हम बात करते हैं हर रोज कि जिंदगी से किस तरह से थोड़ा सा बेहतर तरीके से मिले, छोटी छोटी चीज़ों में खुश होने की कोशिश करें। और आज जब मैं बात कर रही हूँ कि शाम की अपनी ही एक अलग बात होती है, तो वो बात बिल्कुल ठीक है। देखिए आज कितनी खूबसूरत शाम है, बाहर बारिश हो रही है, इतना अच्छा मौसम हो रहा है, ठंडी हवा चल रही है, तो चाय पीने का भी अपना अलग ही मज़ा है। और उसके साथ साथ अच्छे अच्छे गाने सुनिए और FM रेनबो सुनते रहिए। देखिए हो सकता है कई लोग ट्रैफिक में फंसे हों, कई लौट रहे हों, तो कोई बात नहीं, इस सब के साथ भी अच्छा म्यूज़िक सुनते रहिए, अच्छी बातें करते रहिए और सुनते रहिए FM रेनबो।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: तुम्हारा नाम है।
1: wow.
0: जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो जाए।
1: I'm not listening to
0: कुछ ही दिन में नजरें इनकी इधर उधर मंडी।
1: I'm not listening
0: सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती।
1: okay, I'm not with
0: तुम इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
1: okay, that's it.
2: जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत अंदाजे 60 कोटी लोक 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या मोफत उपचारांसाठी पात्र ठरले आहेत. आतापर्यंत 12 कोटींहून अधिक मोफत उपचार देण्यात आले आहेत, ज्यामुळे गरीब कुटुंबांच्या वैद्यकीय खर्चात अंदाजे 2 लाख कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. आजच आयुष्मान ॲप डाउनलोड करा आणि आयुष्मान कार्ड बनवा. अधिक माहितीसाठी 14555 वर कॉल करा.
1: अच्छा अच्छा, आपसे एक बड़ा ही कॉमन सा सवाल है वैसे तो. अच्छा, अगर एक बात बताइए, अगर आपका आज का दिन एक गाना होता तो वो कौन सा गाना होता? मतलब क्या वो इलाही होता, जैसे पूरा दिन घूमते भागते निकल गया हो, या फिर वो जिंदा की तरह होता क्योंकि आज भी किसी ने हार नहीं मानी और कल फिर से कोशिश करने को तैयार है, या फिर कल होना हो होता क्योंकि पूरे दिन बस यही लग रहा था कि बस अब तो थोड़ा आराम मिल जाए. तो आपके दिन के हिसाब से आपका आज का साउंड ट्रैक कौन सा होगा? वैसे गाने ना सिर्फ सुनने के लिए नहीं होते, कई बार वो दिन का और हमारे दिल का दोनों का हाल बता देते हैं. तो सोचिए सोचिए आज का आपके दिन का साउंड ट्रैक कौन सा होगा. तब तक सुनिए इसी सोच के साथ ये गाना.

काफ़ी लोगों ने अपने दिन के हिसाब से अपना साउंड ट्रैक बताया। बड़ा ही इंटरेस्टिंग था कि सबका दिन कितना अलग अलग तरीके से गुजर रहा है। ज़रूर नहीं हम बहुत कुछ करें, कभी कम भी काम होता है, कभी ज़्यादा भी, तो ये सब तो लगा रहता है। लेकिन मैं जो गाने देख रही हूँ उनको देख के मुझे लग रहा है कि सबके दिन बड़े इंटरेस्टिंग से निकले हैं। तो चलिए, लव यू ज़िंदगी को अब समेटती हूँ। लव यू ज़िंदगी 6:05 पर आप सुनेंगे समाचार, और उसके बाद फिर हम मिलेंगे अंदाज़े बयां में। तब तक के लिए सुनिए ये गाना। और सुनते रहिए 107.1 FM रेनबो।

इश्क सूफियाना जी। तो समय हो रहा है 6:20 और ये है हमारे अंदाजे बयां प्रोग्राम का टाइम। वैसे इस समय तक हम लव यू जिंदगी से होते हुए अंदाजे बयां तक पहुंच जाते हैं और यहाँ पे आके हमारा अंदाज थोड़ा शायराना हो जाता है। अच्छा, कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ कहती है। कुछ लोग हमारे सामने होते हैं लेकिन हम उनसे कुछ कह नहीं पाते और कुछ लोग दूर होते हैं फिर भी उनसे मनी मन बहुत सारी बातें होती रहती हैं। शायद इसलिए कुछ गज़लें हमें इतनी अपनी लगती हैं क्योंकि उनमें वो बातें होती हैं जिन्हें हम खुद कभी कह नहीं पाए। तो आज की ये गज़ल इसी बात पे निर्भर करती है। तो चलिए सुनते हैं ये गज़ल।

तुम्हें देख। मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

टाइम बहुत हो गया, नहीं प्लीज। हाँ लेकिन एक वो फिल्मी एक गाना है उनकी फरमाइश, बड़ी देर से कर रहे हैं, रफ्ता रफ्ता वो क्या है, वैसे गजल अच्छी है ये भी।

0: करांसाठी पात्र ठरले आहेत। आतापर्यंत 12 कोटींहून अधिक मोफत उपचार देण्यात आले आहेत, ज्यामुळे गरीब कुटुंबांच्या वैद्यकीय खर्चात अंदाजे 2 लाख कोटी रुपयांची बचत झाली आहे। आजच आयुष्मान ॲप डाउनलोड करा आणि आयुष्मान कार्ड बनवा। अधिक माहितीसाठी 14555 वर कॉल करा।
1: आप सभी को गाने गज़लें बहुत पसंद आ रहे हैं, आप सभी इतनी देर से हमारे साथ बने हुए हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अंदाजे बयां अपने अंतिम चरण पे है। एक बात कहना चाहती हूँ, जाते जाते दिल ये कहता है कि अगर आप हमारे होते, अब भी प्यारे हैं मगर और भी प्यारे होते। मेरी आँखों में चमकते हुए कतरे देखो, ये अगर अश्क ना होते तो सितारे होते। इसी के साथ आज की आखिरी गज़ल, और फिर मैं आपसे मिलती हूँ हम तुम में। उसके पहले समाचार आएंगे, उसके बाद हम तुम शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए हमारा प्रोग्राम 107.1 FM रेनबो पे। और अंदाज़े बयां को ख़त्म करते हुए आखिरी गज़ल,

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: समय हो रहा है 7:11 जो कि होता है हमारे हम तुम प्रोग्राम का। इसमें आप सभी अपने पसंदीदा गाने हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8586577601071। आज मुकेश जी का बर्थडे है, जो हमारे

इंडियन सिनेमा के बहुत बड़े सिंगर रहे हैं मुकेश चंद माथुर जी, तो काफ़ी सारे लोगों ने उनके गानों की फरमाइश की है, तो मैं कोशिश करूँगी कि सबके गाने प्ले कर सकूं। बाकी आप हमारे साथ बने रहिए, म्यूज़िक सुनते रहिए और अपनी फरमाइशें करते रहिए। और ये गाने आज के प्रोग्राम की शुरुआत फिर हम मुकेश जी के गाने के साथ ही करते हैं, जो कि हम सभी को बहुत पसंद है ये गाना। तो चलिए सुनते हैं अगला गाना।

जी, हम तुम प्रोग्राम में आज हमने शुरुआत की मुकेश जी के गाने के साथ, और बहुत सारे लोग आप सब हमारे साथ बहुत देर से जुड़े हुए हैं, अपनी अपनी फरमाइशें बता रहे हैं, और आपको प्रोग्राम और गाने बहुत पसंद आ रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणव शिंदे जी, दीपा पालकर जी, आरती जी, अजय साखरे जी, अरविंद जी, पंकज जी, फिरोज़ शेखनपुरिया जी, राकेश जी, राजेंद्र जी, आप सभी हमारे साथ जुड़े हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी हम सुनते हैं अगली फरमाइश।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत अंदाजे 60 कोटी लोक 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या मोफत उपचारांसाठी पात्र ठरले आहेत. आतापर्यंत 12 कोटींहून अधिक मोफत उपचार देण्यात आले आहेत, ज्यामुळे गरीब कुटुंबांच्या वैद्यकीय खर्चात अंदाजे 2 लाख कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. आजच आयुष्मान ॲप डाउनलोड करा आणि आयुष्मान कार्ड बनवा. अधिक माहितीसाठी 1455 वर कॉल करा.
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है. पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल 0 आ सकता है. मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना. फिर एक एक करके सबका बिजली बिल 0 आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ. पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in.
2: हर घर सूर्य घर.
3: जी तो समय हो रहा है 7:35 और हम तुम कार्यक्रम चल रहा है जिसमें बहुत सारी फरमाइशें आ रही हैं और बहुत सारे लोग जो हैं हमारे साथ जुड़े हुए, जिनका मैं नाम लेना चाहूँगी. पहले कुछ लोगों का लिया था, बाकी अब बचे हुए कुछ लोगों का और लेना चाहूँगी. अंजू जी अंधेरी से, संजय पाटिल जी, बालकर्ण वर्मा जी, कीर्तन पुरी गोस्वामी, चेतन कुमार जी, हीरामणि वर्मा, विजेंद्र घटोला अकोला से, शैलेश एंड विक्रम जी, प्रहलाद जी, मंगेश माथरे जी, सुशील यादव जी, दीपा पालकर जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. और मैं पूरी कोशिश करूँगी इतने समय में जितने जिन सबकी भी फरमाइशें पूरी हो सके, क्योंकि समय का हमेशा ही प्रॉब्लम रहता है. तो चलिए समय ना बर्बाद करते हुए अगला गाना सुनते हैं. आप भी इंजॉय कीजिए. और आप लोग इतनी अच्छी प्लेलिस्ट भेज रहे हैं आज कि आपके साथ साथ मैं भी बहुत इंजॉय कर रही हूँ. तो चलिए सुनते हैं अगला गाना.

समय हो गया है 7:50 और हम तुम भी अब अपने अंतिम चरण पर है। और इतनी जितना हो सका इस वक्त में उतनी फरमाइशें मैंने पूरी करने की कोशिश की है। जो भी गाने बजा रही हूँ उसके बाद भी कुछ लोग बोल रहे हैं कि मुकेश जी के गाने और बजाइए, ठीक है, तो हम वो भी लास्ट के वक्त में हम उन्हीं के साथ अंत करेंगे। जैसे हमने आज के शो की शुरुआत उनके साथ की थी, वैसे ही आज के शो का एंड भी उन्हीं के गाने के साथ करेंगे। और बाकी आप बने रहिए हमारे साथ। आज का समय यही समाप्त हो रहा है, लेकिन अगली बार अगले शो में फिर से मिलूँगी। तब तक मैं आरजे स्वेच्छा आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना और अपनों का ध्यान रखिए और सुनते रहिए 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

और अब एफएम मुख्य समाचार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार युवाओं की भावनाओं और चिंताओं के प्रति संवेदनशील है। दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद रखने की घोषणा की है। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज सुविधा जारी रहेगी। लोकसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि देश भर में 162 वंदे भारत रेल सेवाएं संचालित हो रही हैं। राजस्व खुफिया निदेशालय ने गुजरात के अंकलेश्वर में एक आवासीय परिसर से संचालित मेफेड्रोन के गुप्त संयंत्र का भंडाफोड़ किया। अवैध मादक पदार्थ के निर्माण और तस्करी नेटवर्क में शामिल 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। भारतीय नौसेना ने कर्नाटक के कारवार INS कादम्बा नौसेना बेस पर माही श्रेणी के पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS मालवन को बेड़े में शामिल किया। कश्मीर में आज अनंतनाग जिले में लाल चौक इलाके में आतंकी हमले में एक पुलिसकर्मी बलिदान हो गया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार आतंकियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान जारी है। ईरान पर अमेरिका के हमले लगातार 11वें दिन भी जारी हैं। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा है ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षा के लिए किए जा रहे हैं। गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और गोवा के कुछ इलाकों में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार बारिश का

और खेलों में चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में भारत के आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अल्वी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: the Commonwealth Games.
1: नमस्कार। लंबी अनिश्चितता और आयोजन पर मटराते बादल के बाद आखिरकार वो लम्हा आ गया है जब खिलाड़ी कॉमनवेल्थ गेम्स में अदद एक पदक के लिए अपने शरीर के खून का कतरा कतरा झोंक देंगे और फिर टप टप टपकते पसीने से सींच कर एक मेडल पैदा करेंगे। इस पदक की चमक विजेताओं को जीवन में कभी नहीं भुलाने वाली खुशी देगी। बर्मिंघम से चार साल बाद खेलों का कारवां स्कॉटलैंड के ग्लासगो पहुंचा है। हालांकि इस बार चार साल का ये अंतराल कुछ ज्यादा ही मुश्किलों से भरा रहा है। दरअसल कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य को करनी थी, लेकिन दो साल पहले विक्टोरिया ने लागत बढ़ने और फंड की कमी का तर्क देकर आयोजन से अपना हाथ खींच लिया। इससे कॉमनवेल्थ फेडरेशन मुश्किल में पड़ गया। आयोजन से दो साल पहले नए मेजबान की तलाश का काम आसान नहीं था। काफी प्रयास के बाद आखिरकार ग्लासगो को मेजबानी सौंपी गई, लेकिन यहां भी एक अड़चन आ गई। ग्लासगो ने भी कम बजट की बात कहकर ये शर्त रख दी कि वह सिर्फ उन खेलों का ही आयोजन कर सकता है जिनके लिए वेन्यू उनके पास पहले से ही मौजूद है। ऐसे में खेलों की संख्या में कटौती की गई। बर्मिंघम में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के 19 खेलों के मुकाबले ग्लासगो में यह संख्या सिर्फ 10 रह गई है। जो खेल स्पर्धाएं ग्लासगो में होने जा रही हैं, उनमें एथलेटिक्स, स्विमिंग, ट्रैक साइकिलिंग, वेट लिफ्टिंग, 3x3 बास्केटबॉल, लॉन बॉल्स, नेटबॉल, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक, जूडो और बॉक्सिंग शामिल हैं। दूसरी तरफ जिन 9 खेलों को हटाया गया है उनमें रेसलिंग, बैडमिंटन, हॉकी, स्क्वाश, क्रिकेट, टेबल टेनिस, बीच वॉलीबॉल और रग्बी 7 शामिल हैं। इस फैसले का बड़ा असर भारत की पदक की संभावनाओं पर भी पड़ा है। हम आपको बता दें कि बर्मिंघम में भारत ने बीच वॉलीबॉल और रग्बी 7 को छोड़कर बाकी सभी खेलों में हिस्सा लिया और 61 मेडल्स भी जीते थे। भारतीय दल को बैडमिंटन में 2, क्रिकेट में 1, स्क्वाश में 2, टेबल टेनिस में 7 और रेसलिंग में 12 मेडल मिले थे। ऐसे हालात में पदकों की संख्या का कम होना तय है। अब उन खेलों की बात करें जो इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स का हिस्सा हैं और जहां भारत के लिए पदक की बेहतर संभावना है। भारत को बर्मिंघम में बॉक्सिंग में 7, जूडो में 3, वेटलिफ्टिंग में 10, एथलेटिक्स में 8, लॉन बॉल में 2 और पैरा पावर लिफ्टिंग में 1 मेडल मिला था और कुल 31 मेडल भारत ने जीते थे। इस बार भी पदकों की संख्या इसी के आसपास रहने की उम्मीद है, क्योंकि स्विमिंग, ट्रैक साइकिलिंग, 3x3 बास्केटबॉल, नेटबॉल और आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक में हमारी दावेदारी बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। इस बार के 125 खिलाड़ियों का भारतीय दल मेडल के लिए अपनी सारी ताकत झोंक देगा। इस दल में 77 पुरुष और 48 महिला खिलाड़ी शामिल हैं। सबसे बड़ा 32 सदस्यों का दल इस बार एथलेटिक्स में पदक की दावेदारी के साथ उतरेगा। इसके बाद मुक्केबाजी और जूडो में 14-14 और वेटलिफ्टिंग में 12 खिलाड़ियों का दल हिस्सा लेगा। हम आपको ये भी बता दें कि ओलंपिक मेडलिस्ट वेटलिफ्टर मीराबाई चानू और बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वजवाहक होंगी। कॉमनवेल्थ गेम्स के आयोजन और भारत की संभावनाओं पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय खेल प्राधिकरण साई की प्रतिनिधि और वरिष्ठ खेल पत्रकार हिमिका चौधरी। हिमिका, आपका स्वागत।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: हिमिका, आखिर तमाम हाना के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू होने जा रहा है, लेकिन पिछले आयोजन के मुकाबले इस बार 19 की जगह सिर्फ 10 खेल होंगे। इसका क्या असर इन खेलों के आयोजन पर पड़ सकता है?
2: पिछली बार 61 मेडल्स हमको मिले थे, इस बार उम्मीद है कि एटलीस्ट 32 या 33 मेडल्स, 33 मेडल्स हम लेके आए। जैसा कि सबको पता है अब, और आपने भी इसका जिक्र किया, कि जो हमारे मेन मेडल डिसिप्लिन्स हैं, जैसे बैडमिंटन है, जैसे बॉक्सिंग है, जिसमें हम लोग हमेशा से स्ट्रांग रहे हैं, इस वाले ग्लासगो CWG में नहीं है, तो उम्मीद ये है कि जिसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें तो हम जरूर अच्छा करेंगे, पर हाँ, ओवरऑल एक इम्पैक्ट तो जरूर रहेगा मेडल टैली में।
1: जी, और भारत के खिलाड़ियों के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स की अगर हम बात करते हैं तो ये गेम्स न सिर्फ पदक जीतकर मनोबल बढ़ाने के लिए, बल्कि उसी साल होने वाले एशियन गेम्स और एक साल बाद होने वाले ओलंपिक की तैयारियों के लिए भी अच्छा मंच प्रदान करता रहा है। इस बार कुश्ती, शूटिंग, हॉकी, बैडमिंटन, आर्चरी का न होना क्या एशियाई खेलों और ओलंपिक्स में भी भारत की संभावनाओं को प्रभावित कर सकता है?
2: आपने बिल्कुल सही कहा। तो उस हिसाब से तो जो एथलीट जाते हैं, और ये हम सबको पता है कि सिर्फ प्रैक्टिस करना, ट्रेनिंग करना ही इनफ नहीं होता, एक एथलीट के लिए सबसे जरूरी होता है कंपटीशन। एक क्लासिक एग्जांपल है नीरज चोपड़ा का कि वो जिस एंगल में भाला पहले फेंकते थे, फिर उनको पता चला कि उस एंगल में वो अचीव नहीं कर पा रहे, उनका वो जो 90 जो द ड्रीम मार्क है, तो उन्होंने उस चीज को चेंज किया। तो डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटिशन हम कह सकते हैं कि जो खिलाड़ी नहीं जा पा रहे हैं CWG पर एशियन गेम्स में जाएंगे और आगे ओलंपिक में जाएंगे एलए में, उनके लिए इट्स डेफिनेटली अ लॉस्ट चांस। और ये जैसा आपने कहा, खिलाड़ी का मनोबल और साथ में खिलाड़ी का एक एक्सपीरियंस रहता है, वो उनको इस बार नहीं मिलेगा। पर मैं साथ में ये भी कहना चाहूंगी कि अभी इंडिया में हम लोग इतने सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हैं थ्रू आउट द ईयर। आप अगर देखें तो सिर्फ इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में हम जा रहे हैं, सिर्फ ये नहीं, जितने इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स आज की तारीख में हम इंडिया में होस्ट कर रहे हैं, कि आंकड़ों के हिसाब से देखें तो 2025-26 में हमने 36 कॉम्पिटिशन्स जो है इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स हमने इंडिया में होस्ट किया। अभी 26 पूरा खत्म भी नहीं हुआ है, हम और 11 जो है इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन इंडिया में हम होस्ट करेंगे। अगले साल 19 ऑलरेडी पाइपलाइन में है। ये सारे वर्ल्ड चैंपियनशिप लेवल के कॉम्पिटिशन है, अच्छे स्तर के कॉम्पिटिशन है, तो खिलाड़ियों को कॉम्पिटिशन मिलते रहे हैं, आगे भी मिलेंगे। पर वो जो CWG से एशियन गेम्स जाने का एक जो वो आप कह सकते चार्म होता है, वो डेफिनेटली नहीं मिलेगा, और कुछ कुछ खेलों में ये लॉस जरूर रहेगा।
1: हिमिका, जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे खेल हैं जो इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स का हिस्सा नहीं है, जिसमें हम ढेर सारे पदक भी जीतते रहे हैं, लेकिन जो खेल इस बार शामिल किए गए हैं उसके लिए हमारे खिलाड़ियों ने तैयारियां कैसी की हैं, पदक की कितनी बेहतर संभावनाएं आपको दिखाई दे रही हैं?
2: देखिए, हमेशा कोशिश यही होता है, वो चाहे खिलाड़ियों का हो, वो चाहे सरकार का हो, जो एक सपोर्ट सिस्टम, एक इकोसिस्टम स्पोर्ट्स का तैयार किया है, ग्रास रूट से लेके एलीट एथलीट तक सपोर्ट देने का, हमेशा एफर्ट यही रहता है कि कंपटीशन जिस स्तर का भी हो, जैसे कि इस बार ट्रंकेटेड है, पर एफर्ट में कोई कमी नहीं है, ना एथलीट के तरफ से ना सपोर्ट के तरफ से। तो मुझे लगता है कि हम लोग डेफिनेटली पिछले बार के मुकाबले वो हर डिसिप्लिन जिसमें हम इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कम मेडल तो नहीं लाएंगे, क्योंकि पिछले पूरे CWG साइकिल में, और व्हेन आई से CWG साइकिल, 4 साल का साइकिल होता है, उन 4 सालों में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में जब हमारे एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया, मुझे कहते हुए खुशी है कि एटलीस्ट हर एक इन डिसिप्लिन में, एथलेटिक्स खास करके, क्योंकि उसमें हम लोगों की संभावनाएं काफी ज्यादा है, हम सब जानते हैं कि सारी नजरें टिकी हुई है नीरज चोपड़ा पे, तो नीरज चोपड़ा तो चलिए मैंने वो एक्सपेक्टेड है, वो होने ही वाला है, पर बाकी भी जैसे आप मुरली श्रीशंकर ले लीजिए, तेजस्विन ले लीजिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं वो लोग। तो पिछले कई महीनों में ये सब इंटरनेशनली ट्रेन कर रहे हैं, इंडिया में तो ट्रेनिंग लेते ही है, साई बेंगलुरु में भी वो ट्रेनिंग लेते हैं, NSNIS पटियाला में भी ट्रेनिंग करते हैं, बट ये नजर में रखते हुए कि वो जो इंटरनेशनल खिलाड़ी है उनके स्तर पे, उनके जैसा उनको ट्रेनिंग का मौका मिले, फॉरेन कोचेस का सपोर्ट मिले, तो ऑलरेडी जैसे एथलेटिक्स वाले पोलैंड में है, स्पाला में, साइकिलिंग के बच्चे हैं फ्रांस में, ऑलरेडी वो लोग वहां पे

0: पहुंच चुके हैं, जिमनास्टिक्स के बच्चे हैं वो ऑलरेडी यूके पहुंच चुके हैं और वहीं पे ट्रेनिंग कर रहे हैं। ऐसे और बाकी डिसिप्लिन्स का भी वही है, 20 से ज्यादा फॉरेन कोचेस इंडियन कोचेस के साथ लगे हुए हैं। इंटरनेशनल जो कोचेस हैं उनमें से बहुत सारे लोग ऑलरेडी ओलंपिक चैंपियन तैयार कर चुके हैं, बहुत सारे कोचेस खुद ऑलरेडी ओलंपियंस रह चुके हैं, तो उनका जो एक्सपीरियंस है वो जिस तरह की टेक्निक इंट्रोड्यूस करते हैं उससे हमारे एथलीट्स को बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। और सब कुछ मिला के, मतलब वेदर इंटरनेशनल एक्सपोजर हो, फॉरेन कोचेस हो, या हमारे देश में जो साई सेंटर्स और एकेडमीज में वो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, सब मिला के तैयारी एकदम 100% से ज्यादा है। और इसीलिए उम्मीद ये है कि पिछली बार जितना मेडल इन सब डिसिप्लिन में हमने जीता था, एटलीस्ट उतना या उससे ज्यादा ही मेडल इस बार हम लेके आएंगे।
1: जैसा कि हमने बताया कि इस बार एथलेटिक्स में भारत का सबसे बड़ा दल भाग लेने जा रहा है। ट्रैक इवेंट में पुरुष वर्ग में पदक की एक बड़ी उम्मीद राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी गुरिंदर वीर सिंह 100 मीटर में हिस्सा लेंगे। हम आपको बता दें कि गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर के बीच 100 मीटर स्प्रिंट में हाल के दिनों में कमाल की प्रतिस्पर्धा रही है। हालांकि गुरिंदर वीर सिंह वर्तमान में 10.09 सेकंड के राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ देश के सबसे तेज धावक हैं। उधर अनिमेश कुजूर ने जर्मनी में 10.14 सेकंड का समय निकालकर विदेशी धरती पर सबसे तेज भारतीय होने का रिकॉर्ड बनाया है। हालांकि ग्लासगो में भारत की तरफ से 100 मीटर दौड़ में भाग लेने का मौका गुरिंदर वीर सिंह को मिलने वाला है। उधर 200 मीटर दौड़ में भारत का प्रतिनिधित्व सबसे तेज 20.32 सेकंड का समय रखने वाले अनिमेश कुजूर करेंगे। विशाल टीके की दावेदारी 400 मीटर दौड़ मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले और रमेश का दावा 400 मीटर मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले में होगी। गुलवीर सिंह 5000 मीटर और 10000 मीटर, तेजस शिरसे 110 मीटर हर्डल, यशस पलाक्ष 400 मीटर हर्डल और संतोष कुमार तमिल रासन 400 मीटर हर्डल में भाग लेंगे। ट्रैक विमेन्स कैटेगरी में रशदीप कौर 400 मीटर मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले, नीरू पाठक 400 मीटर मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले, अंसा बाबू 400 मीटर मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले, पारुल चौधरी 3000 मीटर स्टीपल चेज, 5000 मीटर, प्रियंका गोस्वामी 10000 मीटर वॉक, रवीना गायकवाड़ 10000 मीटर वॉक में शामिल हैं। उधर फील्ड मेंस कैटेगरी की बात करें तो दे मीणा और कुलदीप कुमार पोल वॉल्ट में सबसे बड़ी उम्मीद होंगे। सर्वेश अनिल कुशारे और आदर्श राम जे हाई जंप, तेजस्वी शंकर हाई जंप, डेकाथलान मुरली शिशंकर और लोकेश सत्यनाथन लॉन्ग जंप, प्रवीण चित्रावेल और सिल्वा प्रभु ट्रिपल जंप, समरदीप सिंह गिल और तजिंदर पाल सिंह तूर शॉटपुट, नीरज चोपड़ा, रोहित यादव और यशवीर सिंह जैवलिन थ्रो में भारत की बड़ी उम्मीद होंगे। फील्ड वीमेन्स कैटेगरी में पूजा सिंह हाई जंप, मनप्रीत कौर शॉटपुट, सीमा कालीरमन और निधि रानी डिस्कस थ्रो में भारत की चुनौती की अगुवाई करेंगी। वैसे अगर दोहा डायमंड लीग में चौथे नंबर पर रहे नीरज की बात करें तो वो कॉमनवेल्थ गेम्स में अपनी संभावनाओं को लेकर काफी उम्मीद रखते हैं।
2: नहीं, मैं काफी खुश हूँ अपने प्रदर्शन से, क्योंकि मैं इंजरी से आ रहा था और काफी टाइम बाद मैं कंपटीशन खेल रहा, तो मैं काफी खुश हूँ अपनी परफॉर्मेंस से। और ये इस साल का पहला कंपटीशन था और अभी तो पूरा सीजन बाकी है, तो आशा है कि और अच्छी थ्रो देखने को मिलेगी।
1: भारत का सबसे बड़ा दल एथलेटिक्स में ग्लासगो जा रहा है, ऐसे में भारत के लिए पदकों की वास्तविक तौर पर कितनी बेहतर संभावना है?
0: देखिए, एक्सपेक्टेशन पिछली बार से कुछ कम नहीं है। एक्सपेक्टेशन सबसे ज्यादा इस बार एथलेटिक्स से ही है, और जैसा कि आपने कहा कि बड़ी संख्या में कंटिंजेंट जा रही है, पर हम ये भी याद रखें कि एथलेटिक्स में भी सारी डिसिप्लिन नहीं है, पर जो डिसिप्लिन में भारत स्ट्रांग है, जैसे जेवलिन हो गया, ट्रैक एंड फील्ड, ये सारे हमारे जो जंप्स है, क्योंकि वो सब है इस बार के CWG में, तो एक्सपेक्टेशन यही है कि पिछली बार का जो नंबर था उसको शायद हम कुछ एक या दो मेडल से क्रॉस कर जाए इस बार। एथलेटिक्स के लिए पिछले सीजन में ही, और कुछ लास्ट एक डेढ़ महीने की बात होगी, टोटल 26 नेशनल रिकॉर्ड टूटा है सिर्फ एथलेटिक्स में। तो अभी एथलेटिक्स में हमारा जो प्रदर्शन है वो बहुत ही, ये हम कह सकते हैं कि परहैप्स द बेस्ट इन द लास्ट फ्यू कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स। अभी इस टाइम पे हमारा जिस तरह का बेंच स्ट्रेंथ है, हमारा जिस तरह का प्रेपरेशन है, क्योंकि बेंच स्ट्रेंथ बहुत क्रिटिकल होता है, ये हम सबको पता है, तो इस बार क्योंकि ये यंग एथलीट्स है जो बहुत प्रिपेयर्ड है, बहुत ड्रिवन है, एक भूख है उनमें, एक हंगर है, क्योंकि उनको भी प्रूव करना है बहुत कुछ।
1: एथलेटिक्स के बाद जिस खेल से भारत को सबसे अधिक उम्मीद है उसमें बॉक्सिंग सबसे ऊपर है। इसमें पुरुष वर्ग में 55 किलोग्राम में जादूमणि सिंह

0: किलोग्राम में सचिन सिवाच, 65 किलोग्राम में आदित्य प्रताप सिंह, 70 किलोग्राम में सुमित कुंडू, 80 किलोग्राम में अंकुश, 90 किलोग्राम में कपिल पोखरिया और 90 से अधिक किलोग्राम भार वर्ग में नरेंद्र बीरवाल की चुनौती होगी। महिला वर्ग के 51 किलोग्राम में साक्षी चौधरी, 54 किलोग्राम में प्रीति पवार, 57 किलोग्राम में जैस्मिन लांबोरिया, 60 किलोग्राम में प्रिया घंगास, 65 किलोग्राम में परवीन हुड्डा, 70 किलोग्राम में अरुंधति चौधरी और 75 किलोग्राम में लवलीना बोरगोहेन की दमदार चुनौती होगी। साक्षी चौधरी इन खेलों में अपनी संभावनाओं के बारे में क्या कह रही हैं? वो सुनते हैं।
1: जी, हम अभी कॉमनवेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी तैयारी कर रहे हैं। हम 9 जुलाई को आयरलैंड जाएंगे, जहां हमारा मल्टीनेशनल ट्रेनिंग कैंप होगा। वहां से हम डायरेक्ट कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए जाएंगे, तो अभी हमारी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है।
0: पुरुष वर्ग में 60 किलोग्राम में भारत की पदक की बड़ी उम्मीद है सचिन सिवाच।
2: तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत बढ़िया। अपने अपोनेंट्स के सारे उनकी वीडियो देख रहे हैं, गलतियों पे काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी तैयारी चली हुई है। सभी के गोल्ड लिए आने हैं।
0: बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अजय सिंह को भी बॉक्सर्स से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं।
3: देखिए, 14 इवेंट है टोटल हमारे बॉक्सिंग में और 7 लड़के और 7 लड़कियां, तो हमें लगता है कि जो आज तक का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस हमारा रहा है वो गोल्ड कोस्ट में ऑस्ट्रेलिया में, जब हमारे 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज आए थे। उस चैंपियनशिप में भी मैं मौजूद था और मुझे लगता है कि उससे बेहतर परफॉर्मेंस हमारा इस बार होगा।
0: बॉक्सिंग की बात करें तो सिर्फ राष्ट्रमंडल खेलों में ही नहीं, एशियन गेम्स और ओलंपिक में भी हम इस खेल में पदक जीतते रहे हैं। पुरुष वर्ग में सचिन सिवाच और जादूमणि सिंह जैसे उभरते हुए नाम हैं। वहीं महिला वर्ग में टोक्यो 2020 ओलंपिक की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट लवलीना बोरगोहेन के साथ साथ प्रीति पवार, जैस्मिन लांबोरिया, प्रिया घंगास जैसे बॉक्सर्स की भी अपने अपने वर्ग में तगड़ी चुनौती होगी। पदक की कितनी उम्मीद कर सकते हैं ऐसे बॉक्सर्स के रहते हुए?
4: देखिए, बॉक्सिंग हमेशा से हमारा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है, चाहे वो महिलाएं हो या पुरुष हो, बॉक्सिंग में हम अच्छा करते आ रहे हैं। इस बार बेंच स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है और ये जो प्रेपरेटरी जो फेज था, इसमें जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में हमारी टीम ने पार्ट लिया, जैसे कि इंडिया एशियन चैंपियनशिप्स में 3rd नंबर पे उन्होंने फिनिश किया और इंटायर वुमेन्स स्क्वाड ने मेडल्स लेके आए। तो हमारा जो स्ट्रेंथ ऑफ एथलीट्स है वो इस टाइम पे बहुत अच्छा है और आई वुड गो एज फार एज टू से कि महिलाओं का अभी इस बार CWG में मुझे लगता है चांसेस पुरुषों से भी ज्यादा है। तो हम अपने जो नजरें हैं वो महिला बॉक्सर्स पे टिकाए रखे, उनको उनके गेम्स को देखे और मुझे लगता है कि वाकई में मजा आने वाला है और आगे जाके इनमें से बहुत सारी लड़कियां LA तक तो जरूर खेलेंगी। मुझे ये लगता है कि ये सब लंबे टाइम, हालांकि बॉक्सिंग रेसलिंग ये थोड़े इंजरी प्रोन भी होते हैं, पर मुझे लगता है कि ये सब लंबे टाइम के लिए है और खेलेंगे और CWG में अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे।
0: वेट लिफ्टिंग भी ऐसा खेल है जिसमें भारत कुछ पदकों की उम्मीद कर सकता है। इसकी टीम की बात करें तो पुरुष वर्ग में 60 किलोग्राम वर्ग में ऋषिकांत सिंह, 65 किलोग्राम में एम राजा, 79 किलोग्राम में अजय बाबू, 94 किलोग्राम में दिलबाग सिंह और 110 किलो से अधिक भार वर्ग में लवप्रीत सिंह अपनी ताकत दिखाएंगे। महिला वर्ग में पदक की सबसे बड़ी उम्मीद मीराबाई चानू 48 किलोग्राम भार वर्ग में भाग लेंगी। उनके अलावा ज्ञानेश्वरी यादव 53 किलोग्राम, बिंदिया रानी देवी 58 किलोग्राम, हरजिंदर कौर 69 किलोग्राम, संजना 77 किलोग्राम, सेराम निरुपमा देवी 86 किलोग्राम और मार्टिना देवी 86 प्लस किलोग्राम भार वर्ग में भारत की उम्मीदों का केंद्र होंगी। फिट होने के बाद वापस लौट रही मीराबाई चानू पदक को लेकर कितनी आशावान है, ये सुनते हैं।
5: बहुत लकी हूँ कि हम पहले ही बर्मिंघम में आके हम ट्रेनिंग करने का मौका मिला है। हम सबका होप कर रहे हैं कि हम सब मेडल लाए इंडिया के लिए, तो प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रही है।
0: जी हिमिका, कॉमनवेल्थ गेम्स में वेटलिफ्टिंग में भी हमारे अच्छे खासे पदक आते रहे हैं। पदक की सबसे बड़ी उम्मीद मीराबाई चानू फिट होकर वापसी कर रही हैं। इस बार दोनों वर्गों को मिलाकर हम क्या उम्मीद कर सकते?
4: देखिए, मीरा का तो ये है कि उसको मैजिक मीरा कहे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो एक्चुअली एक मैजिशियन है। जब हम मीराबाई को देखते हैं और जैसा उनका कद है और छोटी सी लड़की है मणिपुर से, जैसा कि आपने कहा इंजर्ड थी, पर वो उसने काफी दिनों तक यूएसए में रह के ट्रेनिंग भी किया, रिहैबिलिटेशन भी किया, तो मीरा का तो डेफिनेटली एक मेडल चांस हम कह ही सकते हैं। जैसा आपने कहा कि एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा है, तो वेटलिफ्टिंग में मीरा का चांस हम इक्वली उसी तरह से सोच सकते हैं।

0: एक भारत को गोल्ड मिलने वाले हैं, उसमें से एक तो मीराबाई चानू के नाम होना ही चाहिए और होगा भी शायद।
1: तो दोस्तों, ये थी भारतीय खेल प्राधिकरण साई की वरिष्ठ खेल पत्रकार और प्रतिनिधि हिमिका चौधरी। आकाशवाणी के स्टूडियो आने के लिए, हमसे बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, और जैसा मैंने कहा, लेट्स चीयर फॉर भारत।
1: जूडो में पिछली बार भारतीय दल ने 3 पदक जीते थे। इस बार न सिर्फ पदकों की संख्या बढ़ने बल्कि पहले गोल्ड मेडल की भी उम्मीद की जा रही है। चुस्ते, स्फूर्ति और ताकत के इस खेल में भारत की तरफ से मेंस कैटेगरी में हर्ष सिंह की चुनौती 60 किलोग्राम, रोहित बसीर माजगुल की 66 किलोग्राम, अरुण कुमार की 73 किलोग्राम, हर्ष टोकस की 81 किलोग्राम, करणजीत सिंह मान की 90 किलोग्राम, अवतार सिंह की 100 किलोग्राम और यश घंगास की 100 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में चुनौती है। महिला वर्ग में अस्मिता डे 48 किलोग्राम, श्रद्धा कदाबुल चोपड़े 52 किलोग्राम, यामिनी मौर्य 57 किलोग्राम, उन्नति शर्मा 63 किलोग्राम, इनुन गनबी ताखिल्लाम्बम 70 किलोग्राम, इशरूप नारंग 78 किलोग्राम और तुलिका मान 78 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में अपना अपना दावा पेश करेंगी। पिछली बार सिल्वर मेडल जीतने वाली तुलिका मान ने इस बार गोल्ड के लिए ढेर सारी तैयारी की है। सुनते हैं क्या है उनकी तैयारी।
2: बीइंग एन एथलीट, एलीट एथलीट और ऑलरेडी आई प्लेड द कॉमनवेल्थ 22nd, तो मेरा अभी एम अलग है। मैं उन चीजों को, प्रेशर को नहीं लेके चल रही हूँ। मेरा मेन ये है कि 22 में जो मेरा सिल्वर आया था उसे मुझे अभी कन्वर्ट करना है गोल्ड।
1: तैराकी में भारत का प्रदर्शन राष्ट्रमंडल खेलों में अब तक बहुत अच्छा नहीं रहा है। इतिहास की भी बात करें तो सिर्फ एक ब्रॉन्ज मेडल आया है और वो भी पैरा स्विमिंग के जरिए। फिर भी ग्लासगो में स्विमर्स की अच्छी खासी भागीदारी होगी। भारत ने स्विमिंग में भले ही कोई पदक अब तक न जीता हो, लेकिन तैराक अनीश गौड़ा को इस बार खूब सारी उम्मीदें हैं।
3: तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। ये कॉमनवेल्थ गेम्स बहुत बड़ा इवेंट है, हमारी बहुत हार्डवर्क हो रही है। हम भी चाहते हैं कि वहाँ जाके हमारे देश को प्राउड करें और एक मेडल जीत के वापस आए।
1: आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स में भी भारत की दावेदारी है। मेंस कैटेगरी में तपन मोहंती, तपेश्वर नाथ दास, स्वातिश केपी, सत्यजीत मंडल, जबकि विमेंस कैटेगरी में प्रणति नायक, निष्का अग्रवाल, इशिता रेवाले, प्रतिष्ठा सामंता पदक के लिए जोर लगाएंगी। तपन मोहंती जिम्नास्टिक्स में भारत के नेशनल चैंपियन हैं। ट्रैक साइकिलिंग में भी भारत का दावा होगा। रोनाल्डो सिंह लेटोंजाम 1000 मीटर टाइम ट्रायल, डेविड बेकहम एलकाटो चुंगो और जेम्स सिंह किथेल्लाक्रम एलिट किरिन, दिनेश कुमार और रोजित सिंह यांगलेम पुरुष एंड्योरेंस और परस्यूट स्पर्धाएं, जबकि सेखो हर्षवीर सिंह 4000 मीटर टीम परस्यूट में साइकिलिंग ट्रैक पर होंगे। 3x3 बास्केटबॉल के विमेंस व्हीलचेयर कैटेगरी में भारत की चुनौती होगी, जिसमें रीना, रमेश चंद्र गुप्ता, इरेंगबंग रितु चानू, जाधव मीनाक्षी हरिश्चंद्र, रायन्नावर लक्ष्मी रायप्पा शामिल होंगी। लॉन बॉल्स में भी भारतीय खिलाड़ियों की भागीदारी होगी। पिछली बार भी इस खेल में हमें 2 मेडल मिले थे। इस बार मेंस कैटेगरी में सिंगल्स में पुतुल सोनोवाल, डबल्स में नवनीत सिंह और दिनेश कुमार शामिल हैं। विमेंस कैटेगरी में नयन मोनी सैकिया सिंगल्स में, जबकि रूपा रानी तिर्की और पिंकी सिंह की डबल्स में सहभागिता होगी। कॉमनवेल्थ गेम्स में पैरा खिलाड़ियों से भी ढेर सारी उम्मीदें हैं। क्या कुछ हो सकता है पैरा एथलीटों द्वारा, पैरा खिलाड़ियों द्वारा? संपूर्ण रिपोर्ट के साथ हमारे सहयोगी शाहिद आजमी।
4: जब इरादे बुलंद हो तो कोई भी बाधा मंजिल का रास्ता नहीं रोक सकती। भारत के पैरा खिलाड़ी इसी जज्बे के साथ अब ग्लासगो 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में देश का गौरव बढ़ाने के लिए तैयार हैं। पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया ने कहा कि खिलाड़ियों में इस बार अलग ही जोश है।
5: ग्लासगो जो कॉमनवेल्थ गेम हो रहा है, आज पैरा खिलाड़ियों की सेंड ऑफ सेरेमनी, और मैं हर एथलीट को जानता हूं। अब की बार खिलाड़ियों में एक अलग ही जुनून है। कहीं नहीं कि हम पहले खेलने जाते थे, अब खिलाड़ी मेडल जीतने जा रहे हैं। अब की बार जो परफॉर्मेंस होगी वो एक ऐतिहासिक परफॉर्मेंस होगी। आप देखिए कॉमनवेल्थ में जो पैरा खिलाड़ी विशेष तौर पे, उनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रहेगी और कम से कम हम 5 से 6 मेडल जीतेंगे।
4: ग्लासगो 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का 28 सदस्यीय पैरा दल 5 खेलों में चुनौती पेश करेगा। दल में 11 पैरा एथलीट, 7 पैरा पावर लिफ्टर, 5 पैरा तैराक, 1 पैरा ट्रैक साइक्लिस्ट और 4 महिला व्हीलचेयर बास्केटबॉल खिलाड़ी 3x3 टीम में शामिल हैं। बात पैरा एथलेट एथलेटिक्स टीम की करें तो इनमें देवेंद्र कुमार, दिलीप महादू, राकेश भाई भट्ट, रमेश सनमुगम, शुभमन जुयाल, मोहम्मद बासिल, सोमन राणा, सागर थायत, श्यांश द्विवेदी, शर्मिला और शिल्पा भारती चुनौती की अगुवाई करेंगे।

0: रिकॉर्ड बनाए कॉमनवेल्थ में।
1: यह 100 मीटर T47 में दौड़ लगाने वाले मोहम्मद बासिल।
2: इट इज माई फर्स्ट मेजर कॉम्पिटिशन। लास्ट ईयर आई स्टार्टेड द पैरा स्पोर्ट्स, दिस ईयर आई विल फर्स्ट इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन। सो हैप्पी, सो एक्साइटेड टू द बिग गेम्स, वेरी वेरी एक्साइटेड एंड कॉन्फिडेंट वी गेट इट मेडल रिप्रेजेंटिंग इंडिया।
1: देश के पैरा खिलाड़ी कितने मेडल जीतेंगे, यही सवाल हमने पैरा एथलेटिक कोच सत्यनारायण से किया।
3: पैरा ओलंपिक डेफिनेटली हम लोग 7 मेडल जीतने का उम्मीद कर रहे हैं। 5 मेडल तो कंफर्म है, 100% है। 2 मेडल नीचे ऊपर हो सकता है। मैं एथलीट होके बोलता हूँ एथलेटिक्स पैरा का बहुत अच्छा करेगा।
1: जो एथलेटिक्स टीम जो आपको दी गई है, जो खिलाड़ी सिलेक्ट हुए उनको देखते हुए क्या लग रहा, कितनी मजबूत है, क्या वहाँ पर संभावना उनसे देखते
3: हैं? आप लोग को मालूम है अभी ग्लास्को में बहुत ठंड है, फिर भी मेरा एथलीट पूरा प्रिपेयर है, 100% हम अच्छा मेडल लेके आएगा।
1: अब बात करते हैं पैरा पावर लिफ्टिंग खिलाड़ियों की, जिनमें परमजीत कुमार, अशोक, झंडू कुमार, सुधीर, जसप्रीत कौर, कस्तूरी राजमणि और सुमन देवी से पदक की उम्मीदें रहेंगी। संभावनाओं पर पैरा पावर लिफ्टिंग कोच राजेंद्र सिंह रहेलू कहते हैं,
4: कॉमनवेल्थ में अच्छी संभावना है, हमारे सारे खिलाड़ी फिट है, हम कोशिश है हमारी इस बार पावर लिफ्टिंग में अच्छे मेडल आएंगे। और बाकी जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बोला ही है, देवेंद्र जी ने, कि बहुत बड़ा दल जा रहा है इस बार, पहली बार इतना बड़ा दल जा रहा है, तो एक नया रिकॉर्ड बनेगा, इंडिया बनाएगा, मुझे श्योर है कि हम जीत जाएंगे।
1: पैरा तैराकी में रवि वीरा, वेंकट बुडगिना, अली इमाम, सुरेश जाधव, चैतन्य विश्वास कुलकर्णी और स्वातिक पाटिल भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसी तरह पैरा ट्रैक साइकिलिंग में लिशा दास अकेली भारतीय खिलाड़ी होंगी, जबकि महिला व्हीलचेयर बास्केटबॉल 3x3 टीम में रितु चानू एरेगबम, रीना रमेश चंद्र गुप्ता, मीनाक्षी हरिचंद जाधव और लक्ष्मी रायप्पा चुनौती पेश करेंगी। इस अवसर पर रियो पैरालंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट दीपा मलिक से हमने राष्ट्रमंडल खेलों में देश के खिलाड़ियों से संभावनाओं पर बात की।
5: संभावनाएं बहुत अच्छी है इस टीम में, हमारे कॉमनवेल्थ रैंकिंग 1, वर्ल्ड रैंकिंग 1 ऐसे खिलाड़ी भी जा रहे हैं। तैयारियों से ज्यादा खुशी इस बात की है कि नंबर ऑफ स्पोर्ट्स बढ़े हैं, अब 5 विविध स्पोर्ट्स में हमारे पैरा एथलीट जा रहे हैं और लगभग 28 एथलीट जा रहे हैं, इसमें 40% महिलाएं जा रही हैं, मुझे बहुत खुशी है।
1: भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों की पैरा स्पर्धाओं में अब तक 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते हैं। इस बार उम्मीद है कि भारतीय पैरा खिलाड़ी इस रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे।
6: भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा से विशेष बात की कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के बारे में हमारे सहयोगी शाहिद आजमी ने।
7: आई होप दैट प्लेयर्स डिड प्रिपेयर्ड वेरी वेल एंड इसी साल थोड़ा लिमिटेड इवेंट है हमारा, बट फिर भी अच्छा, होप दैट दे डू गुड।
1: एशियन गेम्स का सेमीफाइनल मानती इसे, इसको कैसे देखते हैं? गेम्स कम है, होप से ज्यादा, लेकिन
7: एशियन गेम्स के पहले ये तो कॉमनवेल्थ गेम्स भी है, वो तो अच्छा है। एशियन गेम्स में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, एनीवे 2 मंथ्स इज देयर दे विल डू, बट अभी तो ग्लासगो में भी आई एम एक्सपेक्टिंग गुड परफॉर्मेंस बाय बिकॉज द गवर्नमेंट, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑल एसोसिएशन इज इन वन लाइन एंड दे आर प्रोवाइडिंग ऑल द फैसिलिटीज विच प्लेयर्स वांट्स, सो एक्सपोजर इज द मस्ट, दे आर गेटिंग फॉरेन एक्सपोजर एंड ऑल दोस थिंग एंड एसोसिएशन इज वर्किंग ऑन इट एंड लॉट ऑफ स्पॉन्सर्स ऑल्सो, फॉर IOA इज ऑल्सो गिविंग फुल सपोर्ट टू प्लेयर्स, सो दैट आई होप दैट प्लेयर्स अच्छा करेंगे।
1: लास्ट क्वेश्चन, 2023 में हम होस्ट कर रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम, तो यहाँ और कुछ सीखने के लिए होगा, देखने के लिए होगा, IOA इसके बारे में क्या कहेगा, कैसे प्लान कर रहा है?
7: Our team is there. Our IOA team and government team, all team is there to see what are all the things they are doing. हम तो पीछे नहीं है, पहले भी बड़ा कॉम्पिटिशन तो इधर ऑर्गेनाइज किया है, बट फिर भी what are all the changes we have to do, all team will be there.
6: भारत के खेल मंत्री मनसुख मांडविया को भी दल से ढेर सारे पदक की उम्मीदें हैं।
8: मेरा पक्का विश्वास और भरोसा है कि भारतीय एथलीट अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, बहुत हौसले के साथ खेलेंगे, देश का गौरव बढ़ाएंगे और भारत का परचम कॉमनवेल्थ में लहराएंगे। दोस्तों, मोदी जी ने हमारे एथलीट को अपने परम मित्र कहे, जब हमारे एथलीट कॉमनवेल्थ के लिए जा रहे हैं तब दोस्तों मोदी जी की शुभेच्छा आपके साथ है, देश के 140 करोड़ की जनता का भरोसा आपके साथ है।
6: ग्लासगो में भारत के लिए खेलों से इतर भी बहुत कुछ होने वाला है, बता रहे हैं भारत के मिशन प्रमुख, दिग्गज टेनिस खिलाड़ी और भारत की डेविस कप टीम के कप्तान रोहित नागपाल।
9: के सिंबॉलिकली अगर आप देखा जाए तो हम लोग नेक्स्ट होस्ट है, तो खेल के अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज प्लान हो चुकी है वहाँ पे। हम लोगों को बेटन लेना है, हम लोगों को वहाँ से फ्लैग लेना है कॉमनवेल्थ का, हम लोगों को कल्चरल डांस दिखाना है इंडिया का, फिर एक ट्रेड कट ग्रुप भी बन रहा है हम लोगों का, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही है एक्सचेंजेस जो कि हम लोग प्लान कर रहे हैं सारा वहाँ खेल के अलावा भी। तो सिंबॉलिकली अगर देखा जाए ऑलराउंडेडली तो एक बहुत जरूरी ये एक ट्रिप है जिसके अंदर हम लोग जाके ये सब चीजें लेके आएंगे इंडिया

0: लिए और सारा फिर फोकस शिफ्ट करेगा इंडिया पे कॉमनवेल्थ गेम्स का। तो ये काफी सालों बाद एक नया गेम्स इंडिया को आएगा। अगर ओवरऑल देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है और यही एक होलिस्टिक पिक्चर है।
1: कुछ ही घंटे में पदकों की दौड़ शुरू होने वाली है और एक दूसरे को पीछे छोड़कर आगे निकलने की होड़ मचने वाली है। पदकों की इस आपाधापी में किसी का सितारा चमकेगा तो किसी को जीत के लिए नई सीख और जज्बा हासिल होगा। तो कल से रोमांच शुरू होने वाला है, हम भी आपसे जुड़े रहेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की हर हलचल, धड़कन और रोमांच के साथ। कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शहनवाज खान और सहयोगी शाहिद आजमी के साथ धर्मेंद्र को भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।
2: The Commonwealth Games.
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM Rainbow.

0: घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इसकी नींव बनना चाहिए। सरकार संसद में नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार। युवाओं के विरोध प्रदर्शनों का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने की आलोचना की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित। विपक्ष ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, बेहतर रेल सुरक्षा, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीक के कारण रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की और चीन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इस परिकल्पना की नींव बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबद्ध क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने युवाओं में मादक पदार्थों के सेवन की गंभीर समस्या से निपटने के महत्व पर भी बल दिया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की।
2: आज श्री कल्याण बनर्जी ने हमारी महिला सांसदों के साथ असंसदीय भाषा एवं असंसदीय टिप्पणियां की है, जिसकी लिखित शिकायत

0: शिकायत माननीय अध्यक्ष जी को प्राप्त हुआ है, ये सदन की गरिमा के विरुद्ध है।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
2: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
1: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्ष के आचरण की कड़ी निंदा करते हुए इसे अत्यधिक गैर जिम्मेदाराना और लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध बताया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मानसून सत्र के लगातार तीसरे दिन विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित होती रही। व्यवधान के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सका। दोनों सदनों में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं चल सका। सरकार की ओर से बार बार यह आश्वासन दिए जाने के बावजूद कि वह नीट पेपर लीक मामले से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष ने अपना विरोध जारी रखा। आज लोकसभा की कार्यवाही 3 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 4 बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि उन्होंने दोनों पक्षों के विचार है और सरकार खुले मन से चर्चा करने के लिए तैयार है। उन्होंने विपक्षी दलों से कार्यवाही बाधित करने के बजाय विस्तृत चर्चा में भाग लेने का आग्रह किया। अनुपम मित्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं की भावनाओं और चिंताओं के प्रति संवेदनशील है।
4: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना, उसका समाधान करना, यह हम सबकी जिम्मेदारी है।
1: उधर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि छात्रों का संघर्ष वास्तविक है और वे बदलाव की मांग कर रहे हैं।
5: हम एडजर्नमेंट मोशन मांग रहे हैं ताकि ठीक से डिस्कशन हो। आप 8 घंटे के लिए वंदे मातरम डिस्कस कर सकते हैं, तो आप लंबे समय के लिए ठीक ढंग से एडजर्नमेंट मोशन पे ये इशू भी डिस्कस कर सकते हैं।
1: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कहा है कि सरकार से नीट परीक्षा लीक मामले पर युवा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करने का आश्वासन मिलने पर वे अपना अनशन समाप्त कर देंगे। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह को लिखे पत्र में श्री वांगचुक ने कल रात अस्पताल में उनसे मिलने के लिए दोनों मंत्रियों का आभार व्यक्त किया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। सरकार ने दिल्ली में विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों के मरने के सोशल मीडिया के दावों का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इन दावों को असत्य बताया है। दिल्ली पुलिस ने पुष्टि की है कि प्रदर्शन के दौरान किसी की मौत होने की कोई खबर नहीं है। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी स्टेशन अब यात्रियों के लिए खुल गए हैं। इससे पहले दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सुरक्षा कारणों से 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेल सुरक्षा में सुधार, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। लोकसभा में आज एक लिखित प्रश्न के उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2014-15 में हुई 135 रेल घटनाओं की संख्या घटकर इस वित्त वर्ष में अब तक केवल 2 रह गई है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा संबंधी गतिविधियों पर व्यय 2013-14 में लगभग 39,000 करोड़ रूपये से बढ़कर 2026-27 में 1,20,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। पिछले 2 वर्षों में सरकार ने अश्लील सामग्री प्रदर्शित करने के आरोप में देश भर में 50 ओटीटी प्लेटफॉर्म को सार्वजनिक पहुंच से बाहर कर दिया है। लोकसभा में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुर्गुन ने कहा कि सरकार शिकायतों के आधार पर ऐसे मध्यस्थों और ओटीटी

0: प्लेटफॉर्म के खिलाफ नियमित रूप से कार्रवाई करती है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में तोतापुरी आमों की खेती, प्रसंस्करण और विपणन प्रणाली में व्यापक सुधार के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश तीनों राज्यों में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की आय में लगातार हो रही गिरावट की शिकायतों के मद्देनजर जारी किए गए हैं। अयोध्या में आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की हुई बैठक में मंदिर प्रबंधन, दान प्रणाली, मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति, ट्रस्ट में रिक्त पद भरने और धार्मिक समिति के पुनर्गठन से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ट्रस्ट ने कहा कि श्रद्धालुओं की आस्था पहले की तरह ही अडिग है और मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या स्थिर है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सातवें वेतन आयोग का गठन कर दिया है। आयोग राज्य सरकार और सरकारी सहायता प्राप्त संगठनों के कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते, पदोन्नति और पेंशन से संबंधित संशोधनों की सिफारिश करेगा। आयोग अगले 6 महीनों के भीतर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। छत्तीसगढ़ में अब अग्निवीर सैनिकों को पुलिस विभाग में आरक्षक, वन विभाग में वनरक्षक और जेल विभाग में प्रहरी की सीधी भर्ती में 10% आरक्षण मिलेगा। इसका लाभ उन अग्निवीरों को मिलेगा जो 4 वर्ष की सेवा पूरी कर वैध सेवा प्रमाण पत्र के साथ सेवा मुक्त हुए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। कल हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा और राजस्थान में भी तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भी इसी तरह के मौसम की स्थिति बने रहने का अनुमान है। सिक्किम के नामची जिले के समरदुंग स्थित सुरंग में बचाव दल ने 8 और शव बरामद किए हैं। अब तक 13 शव बरामद किए जा चुके हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: नामची जिले के NHPC की टनल के अंदर फंसे लोगों को बचाने के लिए आज तीसरे दिन भी रेस्क्यू दल काम कर रही है। कम विजिबिलिटी और मीथेन गैस के लीकेज के वजह से शवों को निकालना मुश्किल हो गया है। इस बीच सिक्किम सरकार ने मरने वालों के पार्थिव शरीर उनके परिवारों को सौंप दिए है। केंद्र सरकार के अलावा सिक्किम सरकार और NHPC ने मरने वालों के परिवारों को मुआवजा देने का ऐलान किया है। घटना के समय टनल के अंदर कम से कम 25 लोगों के फंसे होने की आशंका है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: कश्मीर में आज अनंतनाग जिले के लालचौक इलाके में आतंकी हमले में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। हमले के बाद सुरक्षा बलों का पूरे इलाके में तलाशी अभियान जारी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मृतक पुलिसकर्मी को श्रद्धांजलि देते हुए दोषियों को सजा दिलाने का आश्वासन दिया है। भारतीय नौसेना ने कर्नाटक के कारवार में स्वदेशी रूप से निर्मित माहे श्रेणी का एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट INS मालवन को शामिल किया है। ये नौका जलमग्न निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध अभियानों और कम तीव्रता वाले समुद्री अभियानों के साथ साथ बारूदी सुरंगों को नष्ट करने की क्षमता से लैस है। 80% से अधिक स्वदेशी घटकों से निर्मित ये नौका आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को बल देती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तरी मैसेडोनिया में आज स्कोपिय शहर के संग्रहालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि संघर्ष, असहिष्णुता और विभाजन से जूझ रही दुनिया में गांधी जी के संवाद, करुणा और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के आदर्श अत्यंत प्रासंगिक बने हुए हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठकों के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचावास्केज से मुलाकात की। श्री सोनोवाल ने कहा कि दोनों देश बेहतर भविष्य के लिए परस्पर संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चीन ओपन बैडमिंटन में PV सिंधु और आयुष शेट्टी ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने हमवतन उन्नति हुड्डा को हराया। वहीं आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अलवी फरहान को शिकस्त दी। इस बीच पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन का मुकाबला जापान के

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इस परिकल्पना की नींव बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबद्ध क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बैनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बैनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और संसदीय टिप्पणी की।
1: आज श्री कल्याण बनर्जी ने हमारी महिला सांसदों के साथ असंसदीय भाषा एवं असंसदीय टिप्पणियां की है, जिसकी लिखित शिकायत माननीय अध्यक्ष जी को प्राप्त हुआ है। ये सदन की गरिमा के विरुद्ध है।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
2: सरकार नीट पेपर लीक चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
0: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्ष के आचरण की कड़ी निंदा करते हुए इसे गैर जिम्मेदाराना और लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध बताया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेल सुरक्षा में सुधार, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। लोकसभा में आज एक लिखित प्रश्न के उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2014-15 में हुई 135 रेल घटनाओं की संख्या घटकर इस वित्त वर्ष में अब केवल 2 रह गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा ने कहा है कि नीट पेपर लीक के मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। श्री नड्डा ने कहा कि ये गंभीर मामला है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा कि सरकार संसद में नीट के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष चर्चा की अवधि तय करे और सभी पहलुओं पर खुल कर बात करें ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। उन्होंने विपक्ष से इस मुद्दे के समाधान के लिए सरकार का साथ देने की अपील भी की। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी स्टेशन अब यात्रियों के लिए खुल गए हैं। इससे पहले दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सुरक्षा कारणों से 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए थे। चीन के चांगझोउ में चल रहे चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स के पहले दौर में पीवी सिंधु ने हमवतन उन्नति हुड्डा को हराया। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अल्वी फरहान को हरा

कर अगले दौर में प्रवेश किया। वहीं लक्ष्य सेन ने जापान के युशी तनाका को हरा कर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। Okay.

दोस्तों, मोहब्बत की कोई मंजिल नहीं होती, उसका हर पड़ाव एक नई कहानी कहता है। कभी वो मुस्कुराहट बनकर आती है, तो कभी इंतजार बनकर ठहर जाती है, और कभी कभी किसी गजल के मिसरे में उम्र भर के लिए बस जाती है। वही गजल फिर जब रंगे महफिल में आपकी नजर होती है, तो उसमें न जाने कितने खामोश अफसाने बयां होते हैं। रंगे महफिल में आप हैं विनीता।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति। अयोध्या से

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

रेनबो पर आप हैं प्रोग्राम रंगे महफिल में और आज आपकी महफिल में मैं हूं आपके साथ विनीता बेदी। जिंदगी का सफर दोस्तों मंजिलों से कम लोगों से ज्यादा बनता है। कुछ लोग रास्ते में मिलते हैं और राह आसान कर जाते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो चले तो जाते हैं मगर उम्र भर हर मोड़ पर उनका इंतजार हमारा हम सफर बना रहता है। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत सा मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। सुना है ना आपने भी, लेकिन दिल दिल कहाँ किसी मोड़ पर रुकना जानता है। दिल तो सिर्फ है, और है तो याद भी करेगा।

से एम राजकुमार जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं फारूक अली खान साहब। और आपका भी संदेश हमें मिला है, किशन वंजानी, नीलम, स्वाति और किशु, रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से। आप सब हमारे साथ यहाँ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, इससे ज़्यादा खूबसूरत बात और क्या हो सकती है। और जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था दोस्तों कि बहुत सारी बातें हैं जो नहीं हो पाई पिछली बार, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उन बातों का अर्थ ही छूट गया। आपने बहुत कुछ लिख कर भेजा, जैसे प्रेमचंद जी ने लिख कर भेजा कि अपना कोई जब छलता है आँख में आंसू तब पलता है, तन की कैसे बात करूँ मैं, तन की कैसे बात करूं मैं, धीरे धीरे मन जलता है, पांव में छाले फिर भी चलना, ना अपनी कोई राह बदलना, जरा ठहर कर जब भी देखूं दर्द भरा मंजर मिलता है, अपना जब कोई चलता है आंखों में आंसू तब पलता है। बहुत खूब। तो प्रेमचंद जी, आपकी इस खूबसूरत शायरी के बाद मुझे लगता है सबसे खूबसूरत आवाज रहेगी जगजीत सिंह की।

दोस्तों, टूटना हमेशा बुरा नहीं होता। कभी कभी टूट कर ही इंसान अपने भीतर की सच्चाई से रूबरू होता है। शीशे टूटे तो किरचें बनती हैं, लेकिन दिल अगर टूटे तो अल्फाज जन्म लेते हैं। शायद इसीलिए सबसे खूबसूरत गजलें उन्हीं दिलों से निकली हैं जिन्होंने दर्द को सिर्फ सहा नहीं है बल्कि उसे महसूस भी किया है। दर्द जब भी तहजीब सीख ले ना दोस्तों, तो वो दर्द गजल बन जाता है।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

0: कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

आकाशवाणी रेनबो पर आप हैं विनीता बेदी के साथ प्रोग्राम रंगे महफिल में। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बहुत जरूरी कि इश्क में दीवानगी कोई इल्जाम नहीं है, इश्क में दीवानगी कोई इल्जाम नहीं है। ये तो वो दौलत है जो हर किसी के नसीब में होती ही नहीं। जिसे मोहब्बत ने छुआ हो वो दुनिया को पहले जैसा कभी देख ही नहीं सकता। उसके लिए तो हर मौसम का रंग ही बदल जाता है, हर शाम का रंग बदल जाता है और हर खामोशी एक मुकम्मल गुफ्तगू बन जाती है। कहा भी है ना गालिम ने कि मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का। अब ऐसे में मोहब्बत में फर्क हो या ना हो, लेकिन एक आवाज तो दिल से जरूर निकलती है कि हुआ क्या है तुझे जो इतना बेसब्रा उठा।

दोस्तों कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब कभी नहीं मिलते, बस वक्त आगे बढ़ जाता है, लोग बदल जाते हैं, मौसम वापस लौट आते हैं, मगर दिल के किसी कोने में एक सवाल बरसों तक वैसे ही ठहरा रहता है। शायद मोहब्बत का सबसे बड़ा सच ही यही है कि इसमें जवाब से ज्यादा इंतजार लिखा होता है।

और दोस्तों इसी उम्मीद के साथ कि आज के रंगे महफिल आपकी रूह को छू चुकी होगी, विनीता बेदी आपसे इजाजत चाहती है। फिर किसी शाम कुछ नए एहसासों, कुछ अनकहे जज्बातों और कुछ दिल नशीन गजलों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब खैर। ये गजल खास तौर पे हमारे दोस्तों के लिए जिन्होंने इसकी रिक्वेस्ट भेजी थी।

मध्यरात्रि 12 बज चुके हैं और अब सुनिए एफएम रेनबो पर मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबंधित क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा की। कहा, विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए।

नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद कल भी संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही स्थगित रही। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कहा, युवा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई न होने का आश्वासन मिलने पर वे अनशन समाप्त कर देंगे। भारत ने इबोला से बचाव के लिए केन्या को चिकित्सा सहायता की पहली खेप सौंपी। 4.5 टन चिकित्सा सामग्री दी गई। केंद्र सरकार ने वरिष्ठ IAS अधिकारी अनुराग जैन को नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने जम्मू कश्मीर, असम, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में बाढ़ से हुई मौतों पर दुख जताया। चीन के चांगझोऊ में चल रहे चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल पर टाइम हुआ है रात के 12:02 और अब आप सुनेंगे नॉनस्टॉप बॉलीवुड म्यूजिक। शो का नाम है जीरो आर शो। तो ऐसे ही अब गानों की दुनिया में खो जाइए और नॉनस्टॉप गानों का मजा लीजिए।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर। दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

शुक्रिया पंकज। आज है 23 जुलाई और इस तारीख के साथ अब वक्त भी बदल चुका है और एक बज चुके हैं ठीक घड़ी के, और ये समय है जो इंगित कर रहा है कि अब आपको अवगत कराया जाए अब तक की मुख्य खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबंधित क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा, विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद कल भी संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही स्थगित रही। सामाजिक कार्यकर्ता सोनू वांगचुक ने कहा, युवा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई न होने का आश्वासन मिलने पर ही वे अनशन समाप्त कर देंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल मनीला, फिलीपींस में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान कनाडा

की विदेश मंत्री अनीता आनंद, न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स, मनीला में आसियान महासचिव डॉक्टर काओ किम होर्न से बातचीत की। भारत ने इबोला से बचाव के लिए केन्या को चिकित्सा सहायता की पहली खेप सौंपी। 4.5 टन चिकित्सा सामग्री केन्या को दी गई है। केंद्र सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अनुराग जैन को नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 7वें वेतन आयोग का गठन किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने जम्मू कश्मीर, असम, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में बाढ़ से हुई मौतों पर दुख जताया है। चीन के चांगजू में चल रहे चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की पीवी संधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। हांगकांग में जारी सीनियर विश्व तलवारबाजी चैंपियनशिप 2026 में भारत की शानदार शुरुआत हुई है। तनिक्षा खत्री और प्राचीन लोहा ने महिला व्यक्तिगत एपे वर्ग के मुख्य दौर में पहुंचकर रचा इतिहास। मौसम विभाग ने गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा और राजस्थान में भी तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर और आप जुड़ चुके हमारे साथ। थोड़ी देर में आपका स्वागत करेंगे कार्यक्रम सुहानी रात में। मैं हूं आपके साथ रजत। सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो 102.6।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: कोयल सी तेरी बोली,
3: आए हाय,
2: तेरी तेरी सी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
1: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं

आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
2: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
3: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
2: अल्फा जेन,
3: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
4: कोयल सी तेरी बोली,
5: आए हाय,
4: तेरी तेरी सी नजर में है जादू।
5: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
4: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
5: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट

0: आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
1: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

रात्रि के 2 बज चुके हैं और अब सुनिए एफएम रेनबो पर मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबंधित क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा की। कहा, विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद कल भी संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही स्थगित रही। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम बांगचुक ने कहा, युवा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई न होने का आश्वासन मिलने पर वे अनशन समाप्त कर देंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल मनीला, फिलीपींस में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनिता आनंद, न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री विस्टन पीटर्स, मनीला में आसियान महासचिव डॉ काओ किम हॉर्न से बातचीत की। भारत ने इबोला से बचाव के लिए केन्या को चिकित्सा सहायता की पहली खेप सौंपी, 4.5 टन चिकित्सा सामग्री दी गई। केंद्र सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अनुराग जैन को नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने 7वें वेतन आयोग का गठन किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने जम्मू कश्मीर, असम, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में बाढ़ से हुई मौतों पर दुख जताया। चीन के चांगझोउ में चल रहे चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। हांगकांग में जारी सीनियर विश्व तलवारबाजी चैंपियनशिप 2026 में भारत की शानदार शुरुआत हुई। तनिक्षा खत्री और प्राची लोहान ने महिला व्यक्तिगत एपे वर्ग के मुख्य दौर में पहुंचकर रचा इतिहास। मौसम विभाग ने गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा और राजस्थान में भी तेज बारिश की संभावना थी। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल सुन रहे हैं आप। रात के 2:03 हुए हैं और अब आप सुनेंगे नॉनस्टॉप बॉलीवुड म्यूजिक शो भुलाई ना बने में। तो बस सॉफ्ट मेलोडियस सॉन्ग्स का मजा लीजिए और गानों की दुनिया में खो जाइए।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: तेरी वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल पर टाइम हुआ है रात के 2:55। भुलाई ना बने शो में नॉनस्टॉप बॉलीवुड म्यूजिक का आप मजा ले रहे हैं और अब इस शो का ये आखिरी गाना ऐश किंग की आवाज में फ्रॉम द मूवी दिल्ली 6।

एक बेहद खूबसूरत शो के बाद अब एक बार फिर से घड़ी ने करवट ली है और अब बज चुके हैं मध्य रात्रि के 3 और ये समय है अब तक के मुख्य समाचारों का। आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबंधित क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा, विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद कल भी संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही स्थगित रही। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कहा, युवा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई न होने का आश्वासन मिलने पर वे अनशन समाप्त कर देंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल मनीला, फिलीपींस में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद, न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स, मनीला में आसियान महासचिव डॉक्टर काओ किम होन से बातचीत की। भारत ने इबोला से बचाव के लिए केन्या को चिकित्सा सहायता की पहली खेप सौंपी। 4.5 टन चिकित्सा सामग्री इसमें दी गई। केंद्र सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अनुराग जैन को नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 7वें वेतन आयोग का गठन किया। चीन के चांगजू में चल रहे चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की पीवी संधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 कल से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू हो रहे हैं। इस बार प्रतियोगिता में 74 देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। हांगकांग में जारी सीनियर विश्व तलवारबाजी चैंपियनशिप 2026 में भारत की शानदार शुरुआत। तनिषा खत्री और प्राची लोहान ने महिला व्यक्तिगत एपे वर्ग के मुख्य दौर में पहुंचकर रचा इतिहास। मौसम विभाग ने गुजरात और मध्य प्रदेश में और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा और राजस्थान में भी तेज बारिश की संभावना जताई गई है। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर जारी है हमारे मध्यकालीन मध्यरात्रिकालीन प्रसारण। 3:02 हो चुके हैं और अब समय हो चला है हमारे नियमित कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज का। इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं आप मेरे यानी रजत के साथ। आप सभी का हार्दिक तहे दिल स्वागत।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

0: वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह

0: 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

सुबह के 4 बज चुके हैं। अब सुनिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल पर मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबंधित क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा की। कहा, विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कहा, युवा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई न होने का आश्वासन मिलने पर वे अनशन समाप्त कर देंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल मनीला, फिलीपींस में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनिता आनंद, न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री विस्टन पीटर्स, मनीला में आसियान महासचिव डॉ काओ किम होर्न से बातचीत की। भारत ने इबोला से बचाव के लिए केन्या के चिकित्सा सहायता की पहली खेप सौंपी। 4.5 टन चिकित्सा सामग्री दी गई। केंद्र सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अनुराग जैन को नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने 7वें वेतन आयोग का गठन किया। चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 4:30 पर शुरू होगा। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू होंगे। इस बार प्रतियोगिता में 74 देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। और मौसम विभाग ने गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा और राजस्थान में भी तेज बारिश की संभावना है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल। सुबह के 4:03 हुए हैं और अब आप सुनेंगे नॉनस्टॉप बॉलीवुड म्यूजिक सारे गामा शो में। तो अभी शुरुआत करते हैं मनन भारद्वाज और स्टीवन बीन की आवाज में फिल्म आर्यभट्ट का जीरो फिल्म से करने के।

0: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तो मैं सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: दिल के तराने गाने नए पुराने नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल पर आप सुन रहे हैं नॉन स्टॉप बॉलीवुड म्यूजिक के सारे गामा शो में सुबह के 5 बजने वाले हैं और थोड़ी देर में आप सुनेंगे मुख्य समाचार, लेकिन अभी इस शो का ये छोटा सा लास्ट गाना।